फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन

0: संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जवाब में एक साधु ने कहा था, मनुष्य की सदा जीवित रहने की चाह। देख रहा है कि यहां से सारे प्राणी एक एक कर मौत के ग्रास बनते जा रहे हैं, फिर भी वह सदा जीवित रहने की कामना करता है। संत कबीर कहते हैं, काल जीव को ऐसे बारी बारी से मुख में चबाता है मानो कोई व्यक्ति मुट्ठी भर चने खा रहा हो। कुछ मुंह में चला गया है और कुछ मुट्ठी में बाकी है। हम सब जानते हैं हमारी मौत अवश्यंभावी है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, फिर भी सारी जिंदगी ऐसे उपक्रम करते हैं मानो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुए हैं। यदि हम थोड़ा सा पीछे पलट कर देखें तो मैदान एकदम सफाचट दिखाई देता है। ढूंढने से भी आज से 100 वर्ष पहले का एक भी इंसान जीवित दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि गांव घर, शहर का नक्शा भी बदल गया है। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी, शूरवीर और राजे महाराजे हुए, पर आज उनका नामो निशान भी शेष नहीं है। न राम राज्य रहा, न रावण की लंका ही रही। महासत्यवादी हरिश्चंद्र, महादानी कर्ण, महाबली भीम, महाधनुर्धर अर्जुन, महाप्रतापी रावण, बलवान कुंभकर्ण सब काल के गाल में समा गए। भगवान राम और कृष्ण भी आज कहाँ हैं? फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। पागलों की भांति आशक्त होकर प्राणी पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं। मानव मरने पर सबको अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। कौन नहीं जानता हमारे सारे रिश्ते नाते छड़भंगूर हैं, पलक झपकते सब टूट जाएंगे। तब भी न तो ममता छूटती है न अभिमान छूटता है। किसी को रूप यौवन का अभिमान है तो किसी को धन दौलत का, तो कोई मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से फूला हुआ है। लोभ मोह का फंदा भी अत्यंत विकट और भारी है। संतुष्टि कहीं नहीं है। एक घर है तो एक और चाहिए, छोटा है तो बड़ा चाहिए। छोटी छोटी जमीन जायदाद के लिए लोग माँ बाप तथा सगे भाई बहन की हत्या तक करने में नहीं चूकते। हम जानते हैं महाभारत का युद्ध मनुष्य की इसी लोभी प्रवृत्ति का ही नतीजा है, जिसका अंत घोर विनाश के रूप में हुआ। दुर्योधन, 5 गांव तो क्या, पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं था। हमारे भीतर यही प्रवृत्ति विद्यमान है। हम एक एक इन जमीन के लिए लड़ते मरते हैं, यह जानते हुए भी कि सब कुछ यहीं रह जाएगा और एक दिन यहां से हाथ पसारे हुए जाना पड़ेगा। महान कहा जाने वाला सिकंदर अपने वक्त का संसार का सबसे बड़ा लुटेरा और हत्यारा था। उसने अनेक देशों को तबाह कर बेहिसाब संपत्ति लूटी और अपने साथ ले गया, लेकिन जब मृत्यु की घड़ी आई तब उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा। उसने लोगों को आदेश दिया कि जब उसका जनाजा उठे तो उसके दोनों हाथ बाहर दिखाई देते रहें, ताकि लोगों को मालूम हो कि अकुत संपत्ति का स्वामी सिकंदर आज इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। और यही इस संसार की सच्चाई है। मनुष्य नाना कष्टों को सहते हुए भी दीर्घ जीवन की कामना करता है, धीरे धीरे सारी उम्र बीत जाती है, तब सिर धुनता रह जाता है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। हम जिंदगी भर धन दौलत तथा परिवार में उलझकर रह जाते हैं और जीवन का लक्ष्य पीछे छूट जाता है। हम अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते। जीवन अनिश्चित तथा क्षणभंगुर है, अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम समय रहते

0: ना काम कर लें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं विजय कोपारकर द्वारा गाए भजनों को। आइए सुनिए संदेश।
1: चौदह अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली
8: मंगल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना, और जिसमें भजनों को आवाज दिया था विजय को पार करने, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, जिसमें आज चर्चा का विषय है पशुओं में टीकाकरण का महत्व।
1: जय जोहार, राम राम। तो हमन आज चर्चा करबो कि पशुओं में टीकाकरण काबर आवश्यक है। तो टीकाकरण ला आप मन ला जानना है कि टीका जो पशु मन के लगते वह हर इंजेक्शन के रूप में लगते, तो कब कब लगते, कौन कौन से टीकाकरण लगते और काबर लगते, एला हमन जानना चाहबो कि टीकाकरण हर पशु मन पर काबर आवश्यक है। पशु मन ला जो बीमारी होते, बहुत सारा बीमारी बचाव पर हमन टीकाकरण करथन, जब विशेष करके जैसे कि गलघोंटू है, एक टंगिया बीमारी है, खुरहा चपका है, आजकल ब्रुसेलोसिस एक बीमारी होते गर्भ संक्रामक गर्भपात के, ओकर भी टीकाकरण है, और ये एंथ्रेक्स बीमारी है ओकर टीकाकरण है, और बकरियों में भी माने टीकाकरण करथन हमन PPR के, इंट्रोटॉक्सिमिया के, मुर्गी मन में भी टीकाकरण किए जाते। तो टीकाकरण काबर आवश्यक है? टीकाकरण हर एकर बार आवश्यक है कि ओमे जोन बीमारी होते ओकर जीवाणु के ही कुछ अंश ला ओला एंटीजन जो कथन ओला शरीर में पहुँचाया जाते, ओकर शरीर में पहुँचाथन तो ओहर का करते शरीर में जाके ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करते, रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी जला कथन हमन वो शरीर में बनते, और जो बीमारी होते ओकर बचाव बर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना शरीर में बनाते। तो वो जब बीमारी के संक्रमण हो ही, चाहे वह जीवाणु हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे विषाणु हो, ओकर जो है ना बचाव के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाते तो वो बीमारी है शरीर में नहीं होए और ओकर पर बचाव पशु ल होते। जैसे बहुत सारा संक्रामक जो बीमारी है वह बहुत ही घातक होते, पशु के उपचार समय पर नहीं हो जाए ओकर मृत्यु हो जाते। तो पशु के मृत्यु होले हमारे किसान भाई मारे बहुत ज़्यादा जो है ना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ते। आज के समय में बहुत ही गाय जो है पशु है बहुत महंगा है, तो ओकर से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, अगर उपचार भी नहीं हो पाए तो एक बार टीकाकरण कराना हमारे आवश्यक है कि वो जो बीमारी होते ओकर से बचाव के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार करे बर। तो कौन कौन सा टीकाकरण कब कब लगवाना है एकर जो है ना हम बताना चाहबो कि मानसून के पूर्व अभी जो समय है या मानसून के समय में जून में गलघोंटू और एकटंगिया के टीकाकरण, और ये जो बकरी प्रजाति में इंट्रोटॉक्सिमिया होते ओका टीकाकरण करवाना होते। बरसात के बाद जैसे हमन के अभियान चलते बीच बीच में हमार विभाग के द्वारा और टीकाकरण कराए जाते, तो ये खुरहा चपका जो बीमारी होते ये सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते, तो सितंबर अक्टूबर में खुरहा चपका के टीकाकरण होता है। ओकर पश्चात जो है ये आजकल जो टीका है ब्रुसेला के टीका, विशेषकर संक्रामक गर्भपात होते ओला 4 से 8 महीना के बछिया मन लगवाना है, तो ओला कभी भी हमन ओला लगवा सकथन, ओकर कोई ऐसा नहीं है कि इस समय में ही लगाना है। 4 से 8 महीना, 8 महीना तक के बछिया हुई सोला कभी भी ब्रुसेला के टीकाकरण हमन लगवा सकथन। और बकरी प्रजाति के जहाँ टीकाकरण के हमन बात करते हैं, तो बकरी मन में भी बहुत ही आवश्यक है टीकाकरण कराना, विशेषकर PPR बीमारी होते, सर्दी खांसी होते और पतला दस्त होते और बकरी मन की मृत्यु हो जाते, तो ऐसे मैंने PPR बीमारी से बचाए पर PPR के टीकाकरण बरसात के पश्चात ये जो होते सितंबर से अक्टूबर महीना में PPR के या जनवरी से फरवरी के बीच में जो है ना एक टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और मुर्गियों में भी बीच बहुत सारा जो टीकाकरण होते वो मन में भी बहुत ही मुर्गी मन में अमन कथन कि ओकर उपचार से बचाव ही बेहतर है, काबर की मुर्गी मन में उपचार के हमें मौका नहीं मिले, जब बीमारी होते तो कब मृत्यु हो जाते, पूरा झुंड के झुंड में मृत्यु हो जाते, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ना हमारे किसान भाई माला झेलना पड़ते। तो एक टीकाकरण जो है ना समय समय पे वो तो 1 से 7 दिन में रानी खेत के, फिर 3रा से 4था सप्ताह में रानी खेत रेगुलर के, और जब फाउल पाक से जो होता 7वां से 8वां सप्ताह में ये टीकाकरण जो है ना आप मतलब करवाना होते, जगह से बचाव होते और जो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होते ओकर से बचे जा सके थे। तो ये टीकाकरण जो है ना समय समय पे आप मतलब कराना

0: हैं, जगह से बहुत जो नुकसान होते वो बीमारी से हम बचाव कर सकत हन और हमन ओकर पशु मतलब बचा के हमन लाभ प्राप्त कर सकत हन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:40 पर रामचरित मानस कान, 6:50 पर होगा देश कान संस्कृत समाचार, 6:55 पर 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। 7:35 पर होगा कार्यक्रम झरोखा, जिसमें चर्चा का विषय होगा देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए, स्वदेशी वस्तु अपनाए, गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात का समय होगा 8 बजे, 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा 9 बजे, 11 बजे और पुनः 12 बजे। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इससे मिली का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर एवं पुनः 11:55 पर। ये समाचार ले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे शाम 5:30 पर भजन संध्या का समय होगा 5:10 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 6:10 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 6:45 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। चौपाल कार्यक्रम आप इस कार्यक्रम के समाप्ति उपरांत सुन सकेंगे। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। रजनीगंधा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे शाम 5 बजे। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे रविंद्र साठे एवं श्रीकांत पारगांवकर। और इसी के साथ रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वन में देशगान, और इसी के साथ देशगान अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार अनुप्रसारित होंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सुबह सुबह जब गीत बजते हैं तो समा सुरीला हो जाता है। कभी गीत सुख दुख के साथी तो कभी सफर को और खुशनुमा बना देते हैं, और साथ ही साथी की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गीत ही हमारे सफर में हमारा साथी बन जाता है। और गीतों के साथ वक्त कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। तो आइए कार्यक्रम चित्रपट संगीत की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जो है ताल फिल्म का, जिसे गाया अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल है, ए आर रहमान का संगीत है।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत, जिसे गाया था कविता, कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम ने। इस गीत में संगीत था जतिन ललित का और इस गीत को लिखा था समीर ने।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनिए मोहब्बतें फिल्म से उद्भव और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे मिशन कश्मीर का ये गीत जिसे गाया था जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और शंकर ने। और इस गीत को लिखा था राहत इंदौरी ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम आ

संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार सुप्रभा श्रोता मित्रों, आज कार्यक्रम झरोखा में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो मित्र डिडनेश्वरी। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोता साथियों, बाजार से खरीदी गई एक साड़ी किसी बुनकर के घर की आमदनी बन सकती है। मिट्टी का एक दिया किसी कुम्हार के चूल्हे की रोशनी बन सकता है। किसी स्थानीय कारीगर की बनाई चीज किसी परिवार के हुनर को आगे बढ़ा सकती है। यही ताकत है स्वदेशी वस्तुओं की। श्रोता मित्रों, भारत सिर्फ त्योहारों और परंपराओं का देश नहीं बल्कि हुनर और मेहनत का भी देश है। हमारे गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे हुनरमंद हैं जो अपने हुनर से देश को समृद्ध बना रहे हैं। जब हम देश में बने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं तो उसका लाभ एक पूरी श्रृंखला तक पहुँचता है। कारीगर से लेकर व्यापारी और छोटे उद्योग से लेकर परिवार तक, यही छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। श्रोता साथियों, स्वदेशी का अर्थ केवल मेड इन इंडिया ही नहीं बल्कि स्वदेशी एक सोच है, अपने देश के हुनर पर भरोसा करने की, अपने लोगों की मेहनत को सम्मान देने की, जहाँ अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भारतीय विकल्प उपलब्ध हो वहाँ उसे प्राथमिकता देना हमारे हाथ में है। स्वदेशी अपनाने का अर्थ दुनिया से दूरी बनाना नहीं बल्कि अपनी क्षमता को पहचानते हुए अच्छे भारतीय उत्पादों को आगे बढ़ाना है। इसलिए खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को भी अपनी पसंद में स्थान दें। देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं, स्वदेशी वस्तु अपनाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान दें। श्रोता साथियों, अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं ये गीत।

अब कार्यक्रम झरोखा से रिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम में गौ सेवा पर आइए सुनते हैं बापू के विचार।
1: आश्रम का आदर्श तो दूध के बिना गुजर करना है। आश्रम का जैसे यह ख्याल है कि मांस मनुष्य की खुराक नहीं, वैसे ही पशुओं के दूध के संबंध में भी है। एक साल तक बहुत आग्रह के साथ आश्रम में दूध घी के त्याग का पालन करने के बाद यह प्रयोग बंद करना पड़ा। आश्रम में परवरिश पाने वाले बच्चों के शरीर उससे कमजोर होने लगे, बड़े लोग भी दुर्बल होने लगे, इसलिए धीरे धीरे घी और बाद में दूध शुरू हो गया। इनके शुरू होते ही यह निश्चय स्वाभाविक था कि पशु रखे बिना आश्रम का काम नहीं चलेगा। आश्रम गोरक्षा धर्म को मानता है। गोरक्षा शब्द में अभिमान है और आडंबर है। मनुष्य जानवर का रक्षक बनने में असमर्थ है। जो खुद रक्षा चाहता है वह दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। जीव मात्र का रक्षक एक परमेश्वर ही है। ऐसी मान्यता होने के कारण आश्रम ने गोरक्षा के बजाय गो सेवा शब्द का प्रयोग पसंद किया, लेकिन खुद दूध घी छोड़कर सिर्फ परमार्थ की दृष्टि से गो सेवा करने की आश्रम की इच्छा सफल ना हुई, इसलिए ढोर पाले गए। शुरू शुरू में यह स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ गाय बैल ही रखना धर्म है, इसलिए गाय बैल और भैंसे रखी गईं। पर दिनों दिन यह साफ होता गया कि आज तो गो सेवा करने से ही सब मनुष्यत्तर प्राणियों की सेवा हो जाती है। गो सेवा तो मनुष्य के लिए मार्गदर्शक भर है, इसके आगे जाने के उसके पास साधन नहीं है। गाय की नस्ल सुधारना, अलग अलग खुराक देकर उसका दूध बढ़ाने और सुधारने की संभावनाओं की खोज करना, दूध को अधिक काल तक टिकाए रखने की कला सीखना, उसमें से आसानी से मक्खन निकालना, बछड़ों को कम से कम कष्ट देकर खस्सी करना आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। फिलहाल तो यह सब प्रयोग के रूप में चल रहा है, मगर आश्रम की मान्यता यह है कि गाय का उपयोग पूरा हो और दया के साथ हो तो गाय भार रूप बन ही नहीं सकती। आज शायद बहुतों को पता ना हो कि गाय महंगी पड़ती है। वह महंगी पड़ती है इसलिए उसकी हत्या होगी ही। मनुष्य इतना परोपकारी नहीं होता कि खुद मरकर गाय को बचाए, यानी गाय को अपना ही भक्षक बनने दे। आज के हिसाब के अनुसार पशुओं की संख्या इतनी है कि उन्हें अच्छी तरह पालें तो मनुष्य को अपने ही लिए काफी खुराक न मिले। यह बात सही नहीं है, ऐसा साबित करने के लिए यह बताना चाहिए कि गाय बैल को ज्यादा अच्छी तरह पालने से उनकी उत्पादक शक्ति बढ़ सकती है। आश्रम की राय है कि यह साबित करके बताया जा सकता है। आश्रम की मान्यता यह है कि जितनी गौशालाएं और पिंजरा पोल हैं उनका धार्मिक और शास्त्रीय उपयोग हो। धनी लोग अपने यहाँ गौशाला चलाएं और गाय के दूध घी के उपयोग का ही आग्रह रखें तथा गाय के दूध का व्यापार निषिद्ध मानकर सार्वजनिक गौशालाएं इस तरह चलाएं कि उनका आय व्यय बराबर रहे, तो जल्दी ही गाय की रक्षा हो सकती है। अभी तो आश्रम का उद्देश्य छोटा ही है। आश्रम में आदर्श गौशाला चलाना, गाय बैल का विकास करना, मरने पर उनके हर अंग का उपयोग करके यह साबित करना कि उनका खर्च सिर पर नहीं पड़ता, गौशाला चलाते हुए

हुए गोसेवक तैयार करना और तैयार होने पर उनकी सेवाओं का उपयोग करना, यह काम इस समय हो रहा है। इसमें रुकावटें बहुत आती हैं, मगर पूरा भरोसा है कि इसमें सफलता मिलेगी।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर से इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, 11:00 और पुनः

12 बजे विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी केंद्र रायपुर से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। प्रायोजक होंगे सीएफएन विभाग सरगुजा। भजन संध्या आप सुनेंगे 5:10 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुनेंगे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आप सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। समाप्ति उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 7:20 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। समाप्ति उपरांत आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर।

0: कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नाटक का मंचन भी आज निर्धारित है, आप इन कार्यक्रमों में जाकर अपने दिन को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों

0: और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
4: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. Seven workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina.

0: इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र या राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभाग कार्यरत होते हैं और उन विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ उन विभागों को देखने वाले जन प्रतिनिधियों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस बात की सदैव अपेक्षा की जाती है कि कोई भी कार्य भ्रष्टाचार से मुक्त हो और किसी भी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता न हो, पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन समय समय पर कई बार इस तरह की शिकायतें आने पर उसके निवारण के लिए जो संस्था हमारे राज्य में कार्य कर रही है, उसे हम सभी छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के क्या कार्य हैं और इन कार्यों का निष्पादन किस तरह से होता है, इस संबंध में विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा साहब को। आप छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त हैं। उबोवेजा साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: उबोवेजा साहब, जिस तरह से नाम से ही ये पता चलता है कि लोकायुक्त की जो जवाबदारी है वो लोक के लिए है, सबके लिए है, देश और प्रदेश के हर नागरिक के लिए है। तो इस संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी के पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म महासमुंद जिले के ग्राम सरायपाली में 1 जून 1954 को हुआ और मेरा मैट्रिकुलेशन एजुकेशन जो है वो सरायपाली के शिक्षण संस्थानों में ही हुआ और 1971 से लेके 1977 तक मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है दुर्गा कॉलेज और एसकेटी दापके महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा, जहां से मैंने MA LLB की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद मैं वकालत के प्रोफेशन में जिला न्यायालय रायपुर में मैं कार्यरत रहा और न्यायिक सेवा में मेरा प्रवेश हुआ और मैं उसके बाद से लेके 2016 तक मैं न्यायिक सेवा में रहा और मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद से सेवानिवृत्त हुआ था।
0: 2016 में आपकी सेवानिवृत्ति के साथ बहुत सारी उपलब्धियां भी आपके साथ जुड़ी रही हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: मैं इस दौरान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेट्रोलियम केमिकल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भोपाल में पदस्थ रहा। इसके साथ ही मुझे छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे आयोगों का मुझे चेयरमैन बनाया, जिसमें मैंने उनको जांच करके मैंने अपनी रिपोर्टें दी। एक नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड जो है एक TMTC आयोग जो है वो बना था, TMTD, जिसका मैं चेयरमैन रहा। इसके अलावा पामगढ़ तहसील से अंतर्गत मुलमुला कांड हुआ था, जिसके भी जांच कमीशन का मैं चेयरमैन रहा। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो MP के ज़माने में ग्वालियर में होता था और छत्तीसगढ़ में रायपुर में उसका ऑफिस रहा, उसका भी मैं अपना चेयरपर्सन रहा। इसके साथ ही मैं पुलिस अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी का चेयरमैन 2016 से लेकर 2021 तक रहा और वर्ष 2024 से मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग का प्रमुख लोकायुक्त के पद पर पदासीन हूँ और वर्तमान में भी उसमें कार्य कर रहा हूँ।
0: उबोवेजा साहब, आपकी जीवन यात्रा से जुड़ी इन उपलब्धियों के साथ वर्तमान में भी आप पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और लोक आयोग जैसी संस्था के प्रमुख के रूप में प्रदेश के उन तमाम लोगों की उम्मीदों के केंद्र बिंदु हैं और ये उम्मीद इसलिए भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इस संस्था का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया कि हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग अपना कार्य पारदर्शिता के

0: कर सके। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक आयोग संस्था क्या है।
1: आम लोगों के दिल दिमाग में यह धारणा रहती है कि शासन के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा जो अवैध कार्य किए जाते हैं, भ्रष्टाचार के कार्य किए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और भाई भतीजावाद और कई तरह के अनमितता वाले कार्य करते हैं, उनकी शिकायत अगर शासन को ही की जाती है तो शासन अच्छे से उसकी जांच नहीं करती है। और उनकी यह धारणा भी रहती है कि अपना शिकायत को या तो दबा दिया जाता है या शासन जो है अपने कर्मचारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश करती है और शिकायत पे सही जांच नहीं करती है। इस धारणा को दूर करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के किसी स्वतंत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उससे ऊपर के पद के पदाधिकारी के लिए एक लोक आयोग की पदस्थापना जो है वो काफ़ी समय से हो रही है और हुई भी है। मध्य प्रदेश में 1982 से ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद और विभाग रहा है। और चूंकि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य एक नवीन राज्य के रूप में आया तो इस राज्य में भी वर्ष 2002 में प्रमुख लोकायुक्त का पद सृजित किया गया और लोक आयोग अधिनियम 2002 यहाँ बनाया गया और 2 नवंबर 2002 से इसे लागू भी किया गया, जिसका काम है कि राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले जो शासकीय सेवक हैं जिनमें किसी भी विभाग का कोई भी प्यून हो, जो सबसे नीचे लेवल 1 का कर्मचारी होता है और लेवल 18 या 17 जो भी कह लीजिए वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो स्टेट के सबसे उच्च पद के पदाधिकारी होते हैं, इन सब के खिलाफ किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की, पद के दुरुपयोग की, भ्रष्ट आचरण की, भाई भतीजावाद की अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो वो लोक आयोग में कर सकता है और लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इसकी जांच करते हैं और इसके परिणाम से अपना माननीय राज्यपाल को सूचित करते हैं और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की प्रस्तावना करते हैं।
0: उबेजा साहब, लोक आयोग में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं?
1: लोक आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार एक प्रमुख लोकायुक्त का पद यहाँ पे सृजित है। इसके अलावा एक लोकायुक्त का पद सृजित है जिसमें रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की पदस्थापना यहाँ पे की जा सकती है। इसके साथ ही आईएएस श्रेणी का एक सचिव का पद इस लोक आयोग में है। साथ ही 2 जिला न्यायाधीश स्तर के पद हैं जिसमें एक विधिक सलाहकार का पद है, दूसरा उप सचिव का पद है। इसके अलावा बाकी सब मिनिस्ट्रियल स्टाफ यहाँ पे रहते हैं।
0: सर, इसमें कौन कौन से पदाधिकारी जो हैं उनके कार्य कौन कौन से होते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को लोक आयोग में किसी भी लोक सेवक और शासकीय सेवक के खिलाफ शिकायत करनी हो तो उसके लिए 2 प्रोफार्मा बने हुए हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ लोक सेवक से आता ये है कि इस राज्य से संबंधित कोई भी MLA और इस राज्य से संबंधित कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, और इस राज्य से संबंधित किसी भी हायर श्रेणी का अधिकारी, जो IAS भी हो, चाहे वो IFS हो, चाहे वो IPS हो, इन और इसके अलावा ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हैं उनकी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ जो आयोग हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जितने स्टेट के नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जनपद पंचायतें हैं, इन सभी के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन का की शिकायत करनी हो या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए बिना ये इनके सदस्य जो हैं वो

0: उनको बाईपास करके किसी को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं या खुद अनुचित लाभ लेते हैं और किसी को अनुचित नुकसान पहुंचाते हैं या अपने पद का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करते हैं, तो इन सब के खिलाफ जो है वो नियत दो प्रोफार्मा जो है उसके भर के वो शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उनको 250 रुपये जो है वो न्याय शुल्क जो है वो उसकी टिकट जो है वो लगानी पड़ती है। ये चूंकि अधिनियम में इसका प्रावधान है और इसका पालन उनका करना जरूरी है। इसके साथ ही जो घटना जिसकी शिकायत वो करना चाहते हैं वो अपना शिकायत करने से 5 वर्ष के अंदर उसे शिकायत करनी होती है, उसका लिमिटेशन जो है 5 ईयर्स है।
1: बबेजा साहब, आमतौर पर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी शासकीय प्रक्रिया से उसे नुकसान पहुंचता है या प्रताड़ित होता है या उसका काम नहीं होता है, तो वो सबसे पहले तो उसे थाना ही नज़र आता है कि वो थाने में जाए और शिकायत दर्ज करे। तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज करना और लोक आयोग के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करना, इन दोनों में किस किस तरह का अंतर हो सकता है?
0: लोक आयोग में वो जो है डाक के मार्फत से शिकायत प्रेषित कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी वो पेश कर सकता है। इसके अलावा इसके सारे डिटेल्स जो हैं वो नेट पे डाले हुए हैं, ऑनलाइन जो है वो इसकी शिकायत जो है लोक आयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
1: अच्छा, इसमें शिकायत करने के बाद में उस शिकायत का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता शिकायतकर्ता को कैसे चलता है?
0: जो शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पे जो जांच या कार्रवाई होती है उसके परिणाम से उस शिकायतकर्ता को एक प्रति जो है फैसले की भेजी जाती है। इसके साथ ही जो औपचारिक कर्मचारी अधिकारी है जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसको भी आदेश की प्रति दी जाती है, और इसके साथ ही शासन को भी अपना जो कार्रवाई जो है प्रस्तावित की जाती है उसकी प्रति भेजी जाती है।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा साहब को। उबोवेजा साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं इस बातचीत के माध्यम से। आगे भी हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। अब मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर मोड़ें और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: हाँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आनंद फिल्म का जिंदगी कैसी है पहेली, ये गाना मुझे अच्छा लगता है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का मन्ना डे जी का गाया हुआ ये गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त श्री इंदर सिंह उबुवेजा साहब। उबुवेजा साहब, इस गीत से पहले आपने लोक आयोग के कार्य पद्धति के बारे में हमें बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक आयोग की जो जांच प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद इसमें दंडित करने का जो प्रावधान है, ये किस तरह का होता है?
2: लोक आयोग को सिर्फ यहाँ पे शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है और दंड क्या दिया जाना है ये हम उस जो जांच के परिणाम के आधार पे प्रस्तावित करते हैं और ये हम राज्य शासन को प्रेषित करते हैं कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो है वो 3 माह के अंदर संपूर्ण कार्रवाई करके हमें सूचित करे। अगर वो 3 माह के अंदर हमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो हम फिर उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावना जो है माननीय राज्यपाल महोदय की ओर प्रेषित करते हैं और उसके बाद फिर परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं।
1: उबेजा साहब, जब कोई व्यक्ति लोक आयोग में अपनी कोई शिकायत लेकर आता है तब जिसके खिलाफ वो शिकायत कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी भी हो सकता है और बहुत सामान्य सा एक शासकीय कर्मचारी भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है।
2: जी।
1: एक वृत्ति से लेकर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तक की शिकायत इसमें की जा सकती है।
2: वास्तव में पूरे स्टेट के सारे कर्मचारी अधिकारी जो हैं
1: जी,
2: और सारे जनसेवक, जो चाहे वो पंच हो किसी पंचायत का, चाहे वो किसी नगर निगम का मेयर हो, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, ये सारे लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट से जो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं
1: जी,
2: उसके भी पदाधिकारी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं ताकि अपना जो है गवर्नमेंट मनी का मिसयूज कोई ना कर सके।
1: शिकायतकर्ता जब लोक आयोग में शिकायत के लिए आना चाहता है तो उसके पास किस किस तरह के दस्तावेज होने चाहिए?
2: ये जरूरी है कि शिकायतकर्ता जिन तथ्यों के बारे में शिकायत करने आया है उससे संबंधित उसको अपनी शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी प्रमाण जो है उसे पेश करने होते हैं, जिसे वो RTI एक्ट के तहत जो है वो अपना संबंधित विभागों से प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा वो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के लिए एक नोटराइज एफिडेविट जो है वो भी लोक आयोग को पेश कर सकता है। और ये अपेक्षा शिकायतकर्ता से नहीं की जाती है कि वो 100% जो है शिकायत की पुष्टि के लिए प्रमाण पेश करे, जैसे कि आम अदालतों में होता है। हमारे यहाँ अगर हमको थोड़ा सब्सटेंस लगता है, सार लगता है उसमें, और हमको तथ्य लगते हैं कि अपना ये शिकायत की बातें जो हैं प्राथमिक रूप से कहीं पे पुष्टिकारक लग रही हैं, तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट के बड़े से बड़े उच्चाधिकारी को निर्देश देके उनसे हम जांच करा के हम रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद जो है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित करने के लिए हम राज्य शासन को प्रस्तावित कर देते हैं।
1: उबेजा साहब, आपके अनुभव के आधार पर अभी तक बहुत सारी शिकायतें आपके पास आई होंगी।

0: उनके निराकरण के लिए आपके मार्गदर्शन में बहुत से प्रयास भी किए गए होंगे, बहुत से परिणाम भी सामने आए होंगे। अगर हम लोक आयोग को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाने की बात करें, तो अभी फिलहाल इसमें आपको क्या कोई कमी नजर आती है, या आपका अपना कोई ऐसा सुझाव है, या आप कुछ सोचते हैं कि इसे और भी बेहतर किया जाए?
1: मैं आपकी जानकारी के ला दूं कि हमने जो शिकायतें हमें मिलती रही हैं उसके आधार पे हमने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सबसे सर्वोच्च अधिकारी गण जो हैं आईएएस लेवल के अधिकारी, उनके खिलाफ भी हमने बहुत सारे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करने हेतु, उनको दंडित किए जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे हुए हैं। और बाकी कुछ राज्यों में ये व्यवस्था भी है कि अपना जो ईओडब्ल्यू जिसे इकोनॉमिक ऑफिसेस विंग कहते हैं और एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो राज्य शासन अपने नियंत्रण में रखी हुई है कई राज्यों में। तो हमने राज्य शासन को लगातार इस बात के लिए प्रस्तावना भेजी है कि वो ईओडब्ल्यू और एसीबी जो है वो ये छत्तीसगढ़ लोक आयोग के नियंत्रण में दे और हमारे निर्देशन में वो अधिकारी जो और वो विभाग वो काम करेगा, तो इससे जन आस्था जो है और ज़्यादा भी लोगों में बढ़ेगी।
0: उबेजा साहब, जब लोक आयोग के पास में कोई शिकायत आती है और उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोक आयोग जब कार्रवाई करता है, तो उस कार्रवाई में जब ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ फला अधिकारी के खिलाफ जो शिकायत की गई वो सही पाई गई है और उस अधिकारी को दंडित किया जाए, दंडित करने की अनुशंसा आपकी तरफ से होने के बावजूद भी अगर वैसा नहीं होता है, तब उस शिकायतकर्ता के लिए कौन सी राह बाकी रहती है?
1: छत्तीसगढ़ लोक आयोग जो है शिकायत की जब जांच करता है और जहां यह शिकायत के तथ्यों को सिद्ध पाता है, तो उस स्थिति में जो औपचारिक अधिकारी कर्मचारी है उसको एक मौका अपनी सफाई का देता है, वो उसके बाद फिर अंतिम निर्णय जो है वो लोक आयोग लेता है और राज्य शासन को उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए सिफारिश करता है। और राज्य शासन अगर 3 माह के अंदर उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेता है तो फिर राज्य शासन के द्वारा जो है ठोस कार्रवाई न करने के संबंध में लोक आयोग माननीय गवर्नर साहब को जो है वो रिपोर्ट भेजता है और राज्य शासन से आगे एक्शन लेने के लिए प्रार्थना करता है।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये बातचीत हमारे बहुत सारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, जो श्रोता स्थानीय हैं या बाहर के हैं, तो ऐसे श्रोताओं तक इस प्रसारण के पहुंचने के बाद उनके भीतर भी एक जागरूकता की शुरुआत हो सकती है और वे भी अगर किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहें लोक आयोग में, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं आपके श्रोता लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको जहां लगता है कि आपके क्षेत्र के एमएलए और आपके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपके क्षेत्र के अधिकारीगण कर्मचारीगण और आपके जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगण हैं ये किसी भी तरह के अवैधानिक कार्य करते हैं या किसी भी तरह का कोई भ्रष्ट आचरण जो है अपनाते हैं, तो आप बिल्कुल अपना चुप मत रहिए और अपनी शिकायत बेखौफ होकर छत्तीसगढ़ लोक आयोग में कीजिए। आप अगर चाहेंगे तो आपका नाम जो है गोपनीय भी रखा जाएगा और आप जो है इस संस्था पे पूर्ण आस्था रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पूर्णतः स्वतंत्र संस्था है जिस पर किसी भी शासन का कोई नियंत्रण नहीं है और पूर्णतः आप इस पे विश्वास करके कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं।
0: आदरणीय उबेजा साहब, आज आपने छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और हमारे प्रदेश के प्रत्येक विभाग का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ बेहतर से बेहतर ढंग से चले, इसी कामना के संग हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके

0: मार्गदर्शन में लोगों को न्याय मिले, सच्चाई की जीत हो और ऐसा कोई भी कार्य जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता है तो उसके खिलाफ लोग आवाज अवश्य उठाएं और लोक आयोग का सहयोग प्राप्त करें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: इसके साथ ही इनसे मिलिए कि इस अंक से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

से मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री आईएस उबोवेजा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: आज अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म

दिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है और इसी की वजह से उन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला और स्टेज शो की वजह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई और ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखा कि हास्य अभिनेता के रोल में वो देखे गए हैं। तो जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चित्रलोक कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ फिल्म का गाना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ें अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत है अजय अतुल का।

ब्रेक के बाद लीजिए, अब सुनिए यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल हैं शरीफ दोषी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुद्ध देसी रोमांस, इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाजों में जयदीप साहनी के बोल सचिन जिगर का संगीत।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। मैरी कॉम फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रशांत इंगोले का लिखा हुआ गाना, शशि सुमन का संगीत है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।

0: तुम सा नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके झटके के साथ चुलबुले और निराले अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक

तुमसा ने देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

सन 1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता के बल्ले बल्ले की।

फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नए संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।

सन 1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगिनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

उनकी निजी जिंदगी में खलिश और व्यावसायिक जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा रहा था।

0: 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में दोपहर 12:30 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्रप्रकाश द्विवेदी समारोह के मुख्य वक्ता होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्यभर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति, आपसी एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी ने कल नया रायपुर, अभनपुर, राजिम, फिंगेश्वर और जामगांव सहित कई स्थानों

0: पर तिरंगा यात्रा निकाली। कमांडेंट डॉक्टर विनोद कुमार टंडन के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत नया रायपुर स्थित 111वीं वाहिनी मुख्यालय से हुई। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा थामे लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सरगुजा जिले के करजी गांव में आज से नशा मुक्ति पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अंबिकापुर के विधायक प्रबोध मिंज करेंगे। प्रदर्शनी में नशीले पदार्थों की पहचान, उनके शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति के कारण, शुरूआती संकेत तथा मिथक बनाम तथ्य के माध्यम से नशे से जुड़ी भ्रांतियों की जानकारी दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर की टीम ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर को मिली सूचना के आधार पर रायपुर और नागपुर की टीम ने डीआरआई के साथ मिलकर ट्रेन में जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने भंडारा और नागपुर के बीच ट्रेन के B12 कोच में 2 संदिग्ध यात्रियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 1,242,000 विदेशी सोना बरामद हुआ। इसमें 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश में सभी देशी विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों के साथ ही मध्य भंडारण भंडारगार और FL3 पर्यटन बार को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जगदलपुर द्वारा आज निर्यात जागरूकता कैंप और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। और दुर्ग जिले में ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें QR कोड जारी किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रातः के 10 बजे है। सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे एवं पुनः 12 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आप सुनेंगे शाम 7 बजे। समाप्ति उपरांत आप सुनेंगे चौपाल, जिसमें आज की बात होगी जैविक गृह वाटिका स्वास्थ्य के साथ समृद्धि भी। आज की नसीहत में आप सुनेंगे फर्टिगेशन के माध्यम से पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्म गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा 9:00। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से विविध संगीत आप सुनेंगे 10:00। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 10:30 पर। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 7:00 आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

सूचना सुनिए। दिनांक 5/6/2025 को सूचक दुर्गा प्रसाद चौहान, पिता चैत्राम चौहान द्वारा थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एक अज्ञात पुरुष जिनकी उम्र 65 से 70 वर्ष, बड़े डूमरपाले के अंबेडकर नगर नहर पार के पास मृत अवस्था में मिला है। पता चला है कि उक्त मृतक चपले एवं आसपास के गांव से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। शरीर से वृद्ध कमजोर है। सूचना पर थाना खरसिया के मर्ग क्रमांक पर पंचनामा कार्यवाही कर जांच किया जा रहा है। उक्त अज्ञात मृतक पुरुष के संबंध में अभी तक वरिसान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया ऊंचाई तकरीबन 5 फीट, रंग सांवला, सिर में सफेद बाल है, दाढ़ी सफेद, बाल लंबा है, शरीर में भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ पाया गया है। सूचना समाप्त हुई।

सूचना सुनिए। एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र है 65 से 70 वर्ष, बड़े डूमरपाले के अंबेडकर नगर नहर पार के पास मृत अवस्था में पड़ा है। पता चला है कि उक्त मृतक चपले एवं आसपास के गांव में भिक्षाटन करके जीवन यापन करता था। शरीर से वृद्ध कमजोर है। सूचना पर थाना खरसिया के मर्ग क्रमांक 64/2025 चाक कर पंचनामा कार्यवाही कर जांच किया जा रहा है। उक्त अज्ञात मृतक पुरुष के संबंध में अभी तक वारिसान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फीट, रंग सांवला, सिर में सफ़ेद बाल है, दाढ़ी सफ़ेद लंबा बाल है, शरीर में भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ पाया गया है। किसी को भी अगर उनके वारिसान के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत थाने में आकर संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल।

0: जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए अनुराधा पौडवाल को।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937

0: में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने, सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। ही वॉज द पायोनियर ऑफ स्वदेश पूजा। ऑन 1876 वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में आपने सुना संदेश से पहले नेहा कक्कड़ और रोहन प्रेसे को। अगला गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक के स्वर में।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

सुरों की नरम धूप हो, यादों की मीठी छाँव हो, लबों पर कोई गीत हो और रेडियो प्रोग्राम पर आपकी पसंदीदा कार्यक्रम का साथ हो और वो कार्यक्रम है आपकी फरमाइश और आज आपका और हमारा साथ है और आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव। आप सभी को मेरा नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता साथियों, हमेशा की तरह आज भी आपके खत, आपके ईमेल्स और आपके पसंदीदा गीत यहाँ पर स्टूडियो में लेकर हम हाजिर हैं। श्रोता साथियों, सुनिए

फिल्म नमक हलाल का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने, अनजान के लिखे इस गीत में संगीत है बप्पी लहरी का। और इस गीत की फरमाइश इस वक्त हमारे पास आई है बक्सर बिहार से। इस गीत को सुनना चाहते शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू डुमराव बिहार से, डॉक्टर बबलू अंसारी, सोनम आदिबा दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम पंचायत बठिना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
10: कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं हमारे साथ, और कार्यक्रम में अगले सुनिए फिल्म उमराव जान से, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

शहरयार के लिखे इस गीत में संगीत है खयाम का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवरंगपुर भिलाईगढ़ से मनशरा मनहर, देविका मनहर, राजेश्वरी मनहर, सारंगगढ़ से मनु देवांगन, जानवी देवांगन, रजनी देवांगन, रन्नू देवांगन, खर्री कसडोल से गायत्री निर्मलकर, अमित निर्मलकर। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म जूली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल है, राजेश रोशन का संगीत है। सुनिए फिल्म जूली का ये गीत, जिसे सुनना चाहते हैं दत्रेंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चढ़ोंगरी पेपरिया से दुर्गा राम साहू, सिमगा से लव कुश सेन, प्रहलाद आदित्य आशीष और प्रकाश सेन, बंगला मटिया बालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मेहंदी, सौरव, शायना शर्मा और निवान शर्मा।

इस वक्त हमारे पास अगले गीत की फरमाइश आई है, जिसे भेजने वाले हमारे श्रोता साथी पीपर पारा पालछुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वर योगिता नितिन, वंशिका भानुप्रिया दिवाकर, गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा यीशु और अंशु गुप्ता, ताजपुर मोरवा से सदाबहार रेडियो श्रोता संघ भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कारी राय, मीनाकारी पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। ये सुना चाहते हैं फिल्म बाजीगर का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अनु मलिक ने। देव कोहली के लिखे इस गीत में संगीत है अनु मलिक का ही। सुनिए फिल्म बाजीगर का ये गीत।

श्रोता साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट करें, shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बज चुके हैं इस वक्त और वक्त है विविध भारती कार्यक्रम का, जो अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज से कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सुदर्शन फकीर का कलाम।

सूरज सनीम की ये रचना राजेश रोशन थे मुसिकार, तलत महमूद, तलत अजीज की आवाज थी, फिल्म का नाम था डैडी। इससे पहले पंकज उदास की आवाज में सईद राही का कलामा आपने सुना।

0: सुदर्शन फकीर का कलाम था चित्रा सिंह की आवाज।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये कार्यक्रम है रंग तरंग। कलाम गुलजार का, मौसिकार भूपिंदर सिंह, आवाज मिताली सिंह की, एल्बम है चांद परोसा है।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत नामा,
0: रंग तरंग।

0: बहुत कठिन।
1: हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए इन जवानों द्वारा प्रदर्शित किए गए साहस के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष देश में सबसे अधिक गैलेंट्री अवार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस को मिल रहे हैं। इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक राम अवतार सिंह राजपूत को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य के 11 पुलिस अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले

और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन मायापुर पीपलकोटी टनल में गुरुवार शाम को अचानक पानी भर जाने से छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टनल से 22 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में 11 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब और हिमाचल के 1-1 मजदूर शामिल हैं। 6 मजदूर अब भी लापता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारियों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता

0: तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में याद शम्मी कपूर की। आज है उनकी याद का दिन।

राजकुमार फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। एक बार फिर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी।

महफिल शमी कपूर की यादों की, और ये तमाम गाने जिनमें है मस्ती बेफिक्री, रेबेल शमी कपूर, मस्ती की बौछार। हंसर जयपुरी, शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है प्रेम

विविध भारती पर यादों की महफिल, शम्मी कपूर के गाने, जानवर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गाना फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश वो फिल्म जिसे खुद शमी कपूर ने डायरेक्ट किया था, मनोरंजन। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल, आरडी बर्मन की।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। शमी कपूर को हमारा विनम्र नमन। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

آئیے سنیں سریلا سفر. सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार. सुरीला सफर कार्यक्रम में हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत में होते हैं गानों के क्लूज और साथ में ये भी कि आज के इस कार्यक्रम में कौन से गाने बज सकते हैं, ये बातें आपको अंदाजा लगानी पड़ती हैं. तो आज की इबारत शुरू करते हैं. ये दो लोगों की बातचीत है. मुझे बारिश पसंद है. तुम्हें? मुझे पुहार उतनी पसंद नहीं है. मुझे जगजीत सिंह पसंद है. तुम्हें? खट्टी मीठी आंखों की नशीली बोलियां. मुझे बादलों में तस्वीरें खोजना पसंद है. तुम्हें? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो. दो ना. पूछो अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन बताओ. एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, अब तुम बताओ. उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए. एक और बोलूं, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों की जहां होंस आए. अच्छा तो हम चलते हैं, जाता कहां है दीवाने. बादल बिजली चंदन पानी की दुनिया में उस हाथी चल. बताओ ना कब मिलोगे, जब तुम पुकारो. भाई ये आज की इबारत है और इस इबारत में बहुत सारे गाने छिपे हैं. आप जानते हैं कि इन गानों के जरिए ही आज का ये कार्यक्रम सजेगा. तो चलिए श्रोताओं के कुछ कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं. और आज

कि इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि लगातार श्रोताओं के कमेंट्स चले आ रहे हैं और वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि अब मजा आने वाला है, टेक्स्ट पढ़ते ही कई गीत कानों में बजने लगे हैं और आपका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता हर पल सवालों से घेरे, लेकिन वो कौन सा गीत सुनाऊं जो पिया बस जाए तुम्हारे तन मन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज प्यारे

क्या शानदार गाना है ये, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज, खयाम की तर्ज, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस बारे में आए हैं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि ये गाना तो आज जरूरी तौर पर बजेगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये गीत प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सावन के मौसम में अकेलेपन और दिल की तड़प को दिखाता है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आज मैं कुछ पंक्तियां लिखकर भेज रही हूं जिसे आप कार्यक्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां हैं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी एक दास्तान हूं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सूरत गुजरात में रिमझिम बारिश बरस रही है, कल शाम से फिर छाए हैं बादल और मौसम सुहावना हो गया है। एक श्रोता ये बता रही है कि वो एलेक्सा पर विविध भारती सुनती हैं। हमने एक प्रोमो में भी आप सभी को ये बताया है कि एलेक्सा के जरिए कैसे विविध भारती सुनी जा सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि नगमा तलाशी की जद्दोजहमत से आजाद हैं आज, ईजाद इबारत ना खुदा ने खुद ही इसे आसान बना दिया भाई, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक श्रोता ये लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में शम्मी कपूर के शानदार गाने सुनवाए गए और ये गाने हम सभी को बहुत अच्छे लगे हैं, ये हमारे

0: एक नहीं कई श्रोताओं की बातें हैं। एक और श्रोता का कहना है कि ये बातचीत शायद दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो धुनों के बीच हुई है। सवाल बारिश का था, जवाब किसी पुराने गाने ने दिया। बादलों में तस्वीर ढूंढते ढूंढते बात दिल तक उतर आई, कुछ बोल याद आए, कुछ लम्हे और जाते जाते उसने कहा जब तुम पुकारो। बस फिर क्या था, मुलाकात कहीं खत्म नहीं हुई, एक गीत की तरह बजती रही। इस गाने को जिस गायक ने गाया है वो एक साज बजाने के लिए मशहूर थे, तो बताइए कि ये गायक कौन है और वो कौन सा साज बजाया करते थे।
1: जो

अच्छा एक बात बताइए, क्या आप भी आसमान में बादलों की आकृतियां देखकर किसी की तस्वीर ढूंढा करते हैं बादलों में?

भूपिंदर की आवाज में ये गाना आपने सुना, और ये जो गाना है ये सत्या फिल्म का है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उन्होंने ये गाना पहली बार सुना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जानकार हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भूपिंदर सिंह इलेक्ट्रिक स्पेनिश गिटार ज्यादातर बजाते रहे हैं। इससे पहले वो इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार भी बजाया करते थे, पर भानु गुप्ता जी ने उन्हें स्पेनिश गिटार की तरफ मोड़ा है। विशाल भारद्वाज का संगीत था ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में जब सफेद बादल को देखता था तो सोचता था कि ये रजाई में जो रुई भरी जाती है शायद यहीं से आती है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जब मैं शाम को छत पर वॉक करती हूँ आसमां खुला अच्छा लगता है, मैं उनमें बादलों में तस्वीर की कल्पना करती हूँ, कभी सागर जैसे कभी पहाड़ों जैसे, मुझे बादलों में कभी कभी तो गणपति भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भूपिंदर जी अलग अलग तरह की आवाज, उनकी आवाज के टोनेशन अलग अलग हैं और दिल को सुकून पहुंचाती हैं। गिटारिस्ट के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बादल बहुत डराते हैं, उसमें डरावने चेहरे नजर आते हैं। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि बादलों में तस्वीर ढूंढते हैं किसकी ये नहीं बता सकते, इसे राज ही रहने देते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बादलों में आकृति ढूंढने में बड़ा मजा आता है। उसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे तो हर शाम आसमान पर छाए बादलों में कोई ना कोई तस्वीर नजर आती है, कई बार बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अच्छा भाई, जब आसमान और बादलों की बात हो रही है तो क्यों ना इस बात को शेयर किया जाए कि बचपन में जब गर्मियों के दिनों में छत पर सोते थे तो क्या आप भी आसमान में तारों को गिनते थे, तारों के बिंदुओं को जोड़कर कोई तस्वीर बनाते थे? तारों से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए, गर्मियों के आसमान के तारे और वो छत वाला मौसम। बहुत सारे श्रोताओं के और भी कमेंट हैं। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि एलेक्सा में डिफॉल्ट लाइव आता है और कार्यक्रम के साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाते, 2-3 बार आजमाया था। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में ये बात जरूर आपकी सही नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि इन दिनों जब आप सुरीला सफर में आते हैं तो मैं आपका पोस्ट किया हुआ टेक्स्ट पढ़ने से बचती हूं और इस बात का इंतजार करती हूं कि कार्यक्रम शुरू हो आप पढ़ें, क्योंकि आपके पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि इतने कठिन सवाल के हम सब फेल हो जाए। नहीं जी, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जीवन की सुंदरता छोटे पल में है, एक बारिश वाला दिन, एक फुहार वाली शाम, जीवन में ये चीजें कुछ बिछड़े हुए लोगों की यादें दिलाती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, लखनऊ से हैं, श्याम वर्ण बदरी ने संपूर्ण आकाश पर अपना अधिकार जमा रखा है, कल रात्रि तो झमाझम वर्षा हुई लेकिन आज सुबह से कांच की बूंदों की फुहार बरस रही है, ये उनका कहना है। कितनी सजीली भाषा में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी श्रोताओं के कमेंट में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश करूंगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर धड़ाधड़ कमेंट आते हैं और कमेंट एकदम ऊपर की तरफ स्क्रॉल होते चले जाते हैं, तो कमेंट के साथ ताल मिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक श्रोता का कमेंट बिल्कुल इसी वक्त स्क्रीन पर झलका है। वो लिखती हैं कि बिल्कुल सही, जब फ्लाइट का सफर होता है तो बादल ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारा दही किसी ने उड़ेल दिया है, कभी सिंह, कभी कान्हा जी, कभी बड़ा सा भालू, कभी डायनासोर वगैरह की आकृति नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पैदल चलकर स्कूल जाना होता था बचपन में, मैं और मेरी दीदी बादलों में कोई आकार देखते थे तो बड़ा मजा आता था। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि बादलों को देखकर मुझे महाकवि कालिदास का मेघदूत याद आता है। क्या बात है। चलिए अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार गाना है नीरज जी का ये गाना, और इस गाने से जुड़ी एक जो बात है वो ये है कि आप जानते हैं विविध भारती पर मनचाहे गीत कार्यक्रम में आती हैं ढेर सारी चिट्ठियां, वो पोस्ट कार्ड जिनमें बहुत ही आत्मीयता की ऊष्मा होती है। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जो बहुत ही सजीली चिट्ठियां लिखते हैं, स्केच पेन से, रंगीन स्याही से सुंदर सुंदर आकृतियां, फूल पत्तियां बनाते हैं, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बात लिखते हैं, अपना नाम, गाने के बोल, पता। बचपन में हम सभी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में सजीली चिट्ठियां भेजने की कोशिश करते थे, कभी ग्रीटिंग कार्ड बनाते, कभी जन्मदिन की बधाई

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है, 1970 में ये फिल्म आई थी। नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत है। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, प्रेम की वो खूबसूरत इबारत है जिसमें प्रकृति भी बोलती है और मन भी बोलता है। फूलों के रंग जैसे भावनाओं के रंग बन जाते हैं। इस गीत को सुनना जैसे किसी पुराने खूबसूरत खत को पढ़ने जैसा है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ चिट्ठियों को सजाकर तरह तरह की रंग वाली स्याही से लिखते थे, पर हम तो अपनी स्कूल कॉलेज के दिनों में जो नोट्स तैयार करते थे, जो फाइनल कॉपी तैयार करते थे, उसमें सुडौल अक्षरों से लाल या ग्रीन पेन से उसकी हेडिंग लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि शादी से पहले अपने मायके में गर्मियों की छत पर सोते थे, तब 7 तारों का एक समूह देखकर अपने परिवार के सभी लोग उस समूह को जोड़कर देखते थे, क्योंकि हम परिवार में 7 लोग थे। ये जो यादें हैं ये बहुत याद आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती पर मेरी चिट्ठी तो नहीं शामिल हुई, लेकिन फेसबुक के जरिए डिजिटल चिट्ठियां शामिल हो जाती हैं। एक और श्रोता वही याद लिख रहे हैं कि कैसे बचपन में छत पर सोते थे और सप्तऋषि ढूंढा करते थे, तब तारे बहुत स्पष्ट नजर आते थे और बहुत सारे, लेकिन आज तो कृत्रिम रोशनी ने जैसे तारों को लील लिया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने विविध भारती के मनचाही गीत कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक शामिल नहीं हुई है, हमें इंतजार है। इतनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं और हर रोज इन चिट्ठियों को छांटा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी चिट्ठी शामिल हो जाएगी। एक एक चिट्ठी हमारी टीम मिलकर छांट रही है, ये बहुत गजब।

का काम है और सब लोग कर रहे हैं मिलके। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत पर नहीं बल्कि चारपाई पर खुले आसमान के नीचे सोते थे और तारों को गिनते हुए पता नहीं कब नींद आ जाया करती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, बारिश की फुहारें भी पसंद है, पर इतनी ज्यादा बारिश पसंद नहीं है कि सैलाब आ जाए और जान माल की आंधी हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब तारे टूटते थे तो कुछ विश मांगा करते थे, पांच फल का नाम जल्दी से लेते थे, तरह तरह की विश्वास थे टूटे हुए तारों को देखने को लेकर। इसके अलावा कुछ और इतने सारे श्रोता हैं जिन्हें सप्तऋषि तारामंडल देखने का शौक था और बचपन की उनकी याद जैसे आज के इस कार्यक्रम के जरिए ताजा हो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में माँ से पूछते थे कि कितने तारे हैं तो माँ हमेशा जवाब देती थी आसमान में कुल 3000 तारे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बादलों में नीला आसमान सफेद बादलों की चित्रकारी करता है और आकृति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। इसके अलावा बादलों के बारे में कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो ये इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हर दिन यूं होता है कि कभी न कभी पुराने किसी वक्त की याद आती है या गुजरे दौर के किसी व्यक्ति की याद आती है। आज सुबह से आपको किसकी याद

एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में विविध भारती पर मिली फिल्म का विज्ञापन आया करता था और उसमें कहा जाता था अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत शानदार है, आज की इबारत बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, कल 15 अगस्त को उनका जन्मदिन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो

हैं, बता दे तेरी यादें किस कोने में सुखाऊं, बारिश बाहर भी है और अंदर भी। इसके अलावा एक और श्रोता है, लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोली, टेक्स्ट देखा तो उसमें यूनुस जी का नाम था। बस काम करते करते फटाफट जोरदार कमेंट पढ़ने वाले यूनुस जी की याद आ रही थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुबह से मुझे अपने भारत देश की याद आ रही है, अपने देश में नहीं हूं और स्वतंत्रता दिवस के माहौल को याद कर रहा हूं। एक और श्रोता लिखती है कि राखी का त्यौहार आ रहा है और मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें तो बस आपके कार्यक्रम की याद आती है, लिखते हैं और पोस्ट आए और कुछ लिखें। एक और श्रोता अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 45 साल पहले कितना बढ़िया समय था, हाथ का पंखा होता था, कोई रिश्तेदार आता था तो छत पर ही लेटा करता था और तारे गिनते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि बचपन में हम पोस्ट कार्ड को कबूतर का आकार देकर अपने चाचा को भेजा करते थे। एक और श्रोता है जो आसमान में तारे देखना पसंद करती रही हैं और उनका कहना है कि मुझे लगता है कि एक दूरबीन लूं और सितारों की रहस्यमय दुनिया की तरफ चली जाऊं। एक श्रोता है जो आसमान में ध्रुव तारे को हमेशा देखती और ताकती रही हैं। तो ये सब बातें हमारे श्रोताओं की हैं। एक और श्रोता का कहना है कि आज सवेरे अचानक पापा की याद दिल पर छा गई। उनको गए 7 साल हुए, पापा को कॉल करके बात करूं ऐसा एक पल के लिए हुआ पर फिर संभल गई, मन भारी हो गया जैसे काले बादल छा गए। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गानों के बीच की लाइन देखकर पढ़कर गाना जरूर याद आता है पर कई बार उसकी पहली लाइन में गड़बड़ हो जाती है, दूसरे किसी गाने से मिक्स हो जाता है। जब आप कार्यक्रम में गाना सुनाते हैं तो पता चलता है अच्छा अच्छा ये गाना था। और ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स और अब एक बहुत ही मजेदार अद्भुत गाना, ललित गाना आ रहा है। इस गाने के गीतकार का नाम आपको बताना है। जगजीत सिंह के फिल्मी गानों में आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा है और जगजीत सिंह की गजलों में आपके दिल के करीब कोई एक गजल कौन सी है?

भाई जगजीत सिंह के बारे में पूछा एक श्रोता है, उन्होंने पंकज उदास के बारे में बताया ये क्या हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि होश वालों को खबर क्या, ये बहुत पसंद है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, ये बहुत पसंद है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि जगजीत सिंह की गजलों की किताब मैंने 2012 में कानपुर रेलवे स्टेशन से खरीदी थी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गजल बहुत पसंद है और मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को बताती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कौन कहता है मोहब्बत की जबां होती है और झुकी झुकी सी नजर उन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें होंठों से छू दो को तुम पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें पसंद है कोई पास आया सवेरे सवेरे और कोई ये बता दे कि वो तन्हा क्यों है। एक और श्रोता है जिन्होंने मेरी आंखों ने चुना है तुझे देखकर ये वाली रचना पसंद है। इसके अलावा कई और श्रोता हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, कोई फरियाद, ये सब पसंद हैं, ये दौलत भी ले लो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये सब अलग अलग श्रोताओं को पसंद हैं। उसके अलावा एक पंजाबी गीत है सावंदर महीना, ये कुछ श्रोताओं को पसंद हैं। तो देखिए कितने सारी गजलें, कितने सारे नगमे जगजीत सिंह के लोगों ने एकदम से बताए हैं और आप सभी जिस तरह से जगजीत के दीवाने हैं, ये कमाल की बात है। चलिए पुराने दौर में ही रहते हैं और अब मुझे ये बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये दोनों फिल्में आप में से सबसे ज्यादा बार किसने देखी हैं, आज तो पता चल जाएगा। आप दोनों बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये फिल्में आपने कितनी कितनी बार देखी हैं। जरा देखते हैं कि हमारे श्रोताओं में कौन है चैंपियन जिसने सबसे ज्यादा बार ये फिल्में देखी हैं।

भाई एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि मैंने प्यार किया उन्होंने 100 बार देखी और कयामत से कयामत तक जो है 20 बार देखी। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कहती हैं कि हॉल में एक बार देखी और दूरदर्शन पर आई तब भी देखी, यानी उन्होंने कम बार देखी है। उसके अलावा 10 बार कयामत से मैंने प्यार किया देखी एक श्रोता ने, और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। और इसके अलावा 30 दिन तक लगातार एक श्रोता ने देखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि इंदौर की एलोरा टॉकीज में कयामत से कयामत तक देखी थी। 9 बार मैंने प्यार किया देखी है एक श्रोता है उन्होंने, और मैंने प्यार किया एक और श्रोता है उन्होंने 11 बार देखी है और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। 20 बार एक श्रोता ने देखी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तादाद यही है क्या, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। 20 बार देखी ये सबसे ज्यादा है भाई, मेरी तादाद कम रह गई, मैंने तकरीबन 7 बार देखी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने में महिला स्वर किसका है, महिला स्वर किसका है ये बताइएगा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये सुलक्षणा पंडित की आवाज है और हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि मेरी लिस्ट का चौथा गाना शामिल हो गया आज के इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि इन सब बातों को छोड़िए, जब मैं पांचवी में थी तो लव स्टोरी 25 बार देखी थी और अपनापन तो जिस दिन लगी थी उसी दिन 3 सप्ताह 25 पैसे की टिकट में देखी थी। भाई वाह वाह वाह। तो एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे टॉप पर हूं, मैंने प्यार किया एक बार देखी, कयामत से कयामत तक आज तक नहीं देखी। हाँ भाई आप टॉप पर हैं। उसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। मेहसाणा जिले के वीजापुर में भाग्योदय थिएटर में ये फिल्म देखी थी जब वो 6वीं क्लास में थे। तो भाई एक श्रोता है जिन्होंने 100 बार फिल्म देखी है, अब क्या कहा जाए, सेंचुरी मार ली है इन्होंने, ये तो गजब की बात है। इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं की बातें हैं। अब जो गाना आ रहा है वो वक्त की बात करता है। हमें ये बताइए कि किन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ये वक्त बीत क्यों नहीं जाता। किन लोगों के साथ वक्त की रफ्तार तेज लगती है और किन लोगों के साथ धीमी।

0: एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते वक्त ही नहीं कटता। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्रोग्राम जब आप करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं पुणे से अपने गांव भुसावल जाता हूं, माता पिता के साथ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाना चाहिए लेकिन बिजली की फुर्ती के साथ बीत जाता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन है बातूनी दादी अम्मा, उसके साथ समय का पता नहीं चलता। और यूनुस जी, आप शताब्दी एक्सप्रेस हैं, आपके साथ समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पतिदेव के साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम सुनते हुए मुझे लगता है कि वक्त थम जाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, 1:50 पर ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं।
1: कहाँ
0: हम कहीं नहीं जा रहे, अभी बहुत सारे गाने सुनाएंगे, एटलीस्ट 2-3 गाने तो आपको सुनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। पर इस गाने का इस्तेमाल आम बातचीत में आप कब करते हैं और पिछली बार कब किया था ये जरूर बताइएगा। और इस मौसम में कहां पिकनिक मनाने जाने का मन कर रहा है आपका, कुछ इस तरह।

बहुत सारे श्रोता हैं जिनका मन पता नहीं कहां कहां जाने का कर रहा है। किसी श्रोता को जाना है कोंकण, किसी को मुंबई आना है। कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें इछावर के पास कालिया देव की एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पिकनिक मनाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे

एक श्रोताए जो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां श्रोता सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं, अरे इतनी जल्दी 2 बज गए क्या? अरे नहीं, अभी नहीं बजे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ गाने सुना रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि उन्हें सब लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है और यहाँ स्टूडियो में मैं आपको सुना रहा हूँ ये गाना। मुकेश की आवाज है। बताइएगा ये गाना किसने लिखा है।

देखिए, ये गाना बज ही रहा था कि हमारी एक श्रोता कहती है आज बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन अभी जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो वो रुक गई है। मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को ना यूं बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। और ये किस फिल्म का गाना है जिसके जरिए मैं आपसे साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा, बताइए।

भाई हम कहीं नहीं जा रहे। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। और अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी जाता कहाँ है दीवाने वाला गाना हम पर लागू नहीं हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आज की ये इबारत दो लोगों की रूमानी बातचीत वाली इबारत थी। हमें उम्मीद है कि इबारत और उसमें बुने हुए गाने आपको पसंद आए हैं। अब नमस्ते।

ये किस फिल्म का शीर्षक गीत है जो हम बजा रहे हैं? किस फिल्म का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम बजा रहे हैं?

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक, क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था, परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई, परंतु धर्म नामक बांग्ला और कर्मयोगिन नामक अंग्रेजी ऐसे दो नए साप्ताहिक पत्र शुरू करके श्री अरविंद ने अपना प्रखर लेखन जारी रखा। 4 अप्रैल 1910 को गुप्त रूप से चंदन नगर, जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां श्री अरविंद जाकर रहने लगे और आगे चलकर कुछ ही समय में पौंडिचेरी में स्थायी रूप से बस गए। वंदे मातरम का एक प्रचार केंद्र ठंडा पड़ गया। लोकमान्य तिलक का मंडाले कारावास और श्री अरविंद का पौंडिचेरी चले जाना, इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
1: लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए, ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थी। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है।

काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया।

0: 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए, उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए। तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था।
1: आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे। बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था,

0: बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं है, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे, केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे। तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है।
1: बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा।
2: प्रारंभिक काल में वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है।

0: पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: ये थी वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक

0: लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने

0: पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
4: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
5: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
6: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मजाज लखनवी की रचना।

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं। अब उजाला फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: शैलेंद्र की बोलते ही शंकर जयकिशन की तर्ज मनाडे और साथियों की आवाज दी। फिल्म का नाम था उजाला।
1: रॉक, रॉक,
0: और अब दिल देखे देखो फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत उषा कन्ना का।

0: husband and wife.
1: कबीर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम बॉयफ्रेंड, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तरसे।

0: ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अब मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया ये गीत, फिल्म का नाम सिंगापुर।
1: ये शहर बड़ा अलबेला।

0: परियां
1: नमस्ते।
0: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ

0: और इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। आपको बता दें कि ये जो भी गाने आज इस कार्यक्रम में आपने सुने, ये शमी कपूर की फिल्मों के गाने थे। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। उम्र को अगर केवल वर्षों में गिना जाए तो शायद जिंदगी छोटी बड़ी लगने लगे, लेकिन अगर उसे मुस्कुराहटों, अनुभवों, रिश्तों और खूबसूरत पलों में गिना जाए तो हर उम्र अपने आप में एक खूबसूरत मौसम है। मन में उत्साह हो, आंखों में चमक हो और दिल में कुछ नया करने की चाह हो तो जिंदगी हर सुबह एक नए रंग में हमारे सामने आ खड़ी होती है। जिंदगी का असली सौंदर्य इस बात में नहीं कि हमने कितने साल जिए, बल्कि इस बात में है कि हमने उन सालों में कितनी जिंदगी जी है। चलिए देखते हैं आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे बातें करने वाली है। अरे वाह, तो खत्म हुआ इंतजार। अब सुनते हैं हमारी पहली कॉलर को और जानते हैं कहाँ से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली, बताइए आप अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शांति बहन है, अभी डिंगरौल से बात कर रही हूँ, राजसमंद जिले से, राजस्थान से।
0: ओह अच्छा, राजस्थान से बात कर रही हैं आप। तो चलिए बताइए क्या करती हैं आप, क्या जॉब करती हैं या फिर आप घर में रहती हैं?
1: नहीं, हाउसवाइफ।
0: तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बेटे, एक बेटी, बहू, एक पोती, एक पोता, एक नाती।
0: ओहो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा परिवार। आपके बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन उनके बचपन की आपको यादें होंगी कुछ की, जैसे भी 15 अगस्त आ रहा है, तो आप किस तरह से आप उनके लिए तैयारी करती थी? आपको करना पड़ता था कुछ?
1: नहीं मैडम, वो सब स्कूल में से सब तैयारी करवाते थे, सब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को खाली उनके कपड़े का, शूज का, ये सब अच्छे से तैयार करके भेजना था।
0: हाँ, यानी सुबह जल्दी
1: उठना, हाँ टाइम पे उठा के भेजना पड़ता था बस। वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे तो उनको टाइम पे तैयार करके और उसके पापा के साथ भेजना पड़ता था उस दिन।
0: तो अभी भी तो आपके जो नाती पोते हैं आपने बताया, तो उनके लिए भी आपके बच्चे तैयारी करते होंगे अब, है ना?
1: करते हैं ना मैडम।
0: तो ये जो यादें होती है ना, जैसे जो अपने राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ना, उनकी यादें सच में बहुत ही अच्छी होती हैं, हमें हर एक को होती है, है ना? तो पहले तो जैसे क्या क्या चीजें मिलती थी, है ना, तो हम इंतजार करते थे कि जो 15 अगस्त आ रहा है ना, या 26 जनवरी आ रही है,
1: ये सब तैयार करके रखने पड़ते थे जब हम पढ़ने जाते थे। तो
0: पहले से
1: नहीं होते थे तो लेके आते थे, नहीं मम्मी हमको चाहिए ये,
0: एकदम चमकती हुई ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म
1: ड्रेस करवा के लाते थे।
0: बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें रहती हैं,
1: अच्छी अच्छी यादें, और एक उमंग सा होता था
0: बिल्कुल,
1: हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे।
0: हाँ, क्योंकि सब बच्चे उसी तरह से आएंगे। और जो ये राष्ट्र के जो त्योहार होते हैं ना, ये समझिए सही मायनों में त्योहार होते हैं पूरे देश के ना, सब लोग इसमें भाग लेते हैं। तो बताइए
1: आज के दिन आप मेरा ये गाना दे दोगे तो भी अच्छा है।
0: हाँ, आप इस लाइन को आप गुनगुना के बता दीजिए फिर हमें।
1: दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए।
0: वाह क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम सुनवाते हैं,
1: गाना दे दीजिएगा मेरा,
0: सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी,
0: तो आप कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते। मैं बरगढ़ जिला ओडिशा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। सनप्रभा, आप बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ जी, अभी शादी नहीं हुई है, घर में हूँ।
0: अच्छा,
1: घर का कामकाज करती हूँ, आकाशवाणी सब भी आकाशवाणी का केंद्र सुनती हूँ,
0: हाँ।
1: केंद्र का प्रोग्राम सुनती हूँ, और फोन इन को मैं जुड़ जाती हूँ, श्रोताओं के साथ भी जुड़ जाती हूँ,
0: अच्छा,
1: तो काम काज के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जी
0: बिल्कुल।
1: आकाशवाणी का।
0: मनोरंजन जब होता है ना तो काम और आसान हो जाता है ना, और
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: जल्दी
1: जी
0: होता है, या हमें पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता है।
1: काम कम खत्म हो जाता है, पता ही
0: हाँ।
1: नहीं चलता, बहुत अच्छा लगता है
0: तो ये
1: जब गाने
0: बताइए
1: सुन।
0: सन प्रभा जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: जी मुझे कामकाज के साथ साथ गाने सुनना, गाने पुराने गाने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पुरानी फिल्मी का गाने सुनना अच्छा लगता है। तो फिर वो भी मेरी साहित्य में भी जरा रुचि है,
0: अरे वाह।
1: मैं कविता वगैरह लिखती हूँ हमारे ओडिया में, संबलपुरी में।
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छा लगता है ये सब
0: तो ये तो
1: करना
0: बहुत अच्छी बात है, आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप कविता लिखती हैं,
1: जी।
0: कितनी अच्छी बात है ना। अपने विचारों को व्यक्त करने का आपके पास एक तरीका है ना, कविता
1: जी
0: के
1: जी जी
0: माध्यम से या कहानी के माध्यम से, है ना। बहुत अच्छी
1: जी
0: चीज़ है ये। और साथ ही ये बताइए कि तो आपको कौन से जो लेखक हैं या कौन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: जी हमारी तो उड़ीसा का लेखकों का लिखना अच्छा लगता है। हमारे जो हम उड़ीसा में हमारी प्रतिभा है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, और उनकी उपन्यास में बहुत अच्छा लगता है, जैसे
0: हाँ।
1: जाज्ञसेनी अब वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से हैं
0: नहीं, बिल्कुल,
1: जिनका
0: बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात है।
1: अच्छा।
0: देखिए, आप जानती हैं, आप पढ़ती हैं, तो आपको मालूम है उनके बारे में, उनकी लेखनी के
1: जी
0: बारे में आपको पता है। तो आपके जरिए हमें भी पता चला कि कितने अच्छे लेखक हैं वहाँ पे। तो जो पढ़ना
1: जी
0: चाहेगा वो आराम से इनका लेखन निकाल के पढ़ सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये।
1: और
0: तो
1: एक बात बता देती हूँ जी कि हमारे हिंदी में नोवेल बहुत मैं पढ़ती थी पहले,
0: अच्छा।
1: गुलशन नंदा की पढ़ती थी
0: अरे वाह,
1: नोवेल।
0: उनकी तो किताबों के ऊपर कितनी ही फिल्में बनी है ना।
1: बहुत बहुत बहुत
0: हाँ।
1: जो कटी पतंग है।

0: हाँ वगैरह ये सब नॉवेल भी पढ़ चुकी हूँ और फिल्म भी देख चुकी हूँ जी। बहुत
1: जब आपने
0: अच्छा
1: नॉवेल पढ़ा उसके बाद फिल्म देखी तो और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम जिस चीज को
0: जी,
1: पढ़ते
0: सब जानकारी
1: बिल्कुल
0: सब जानकारी हो जाती थी।
1: बहुत अच्छे लेखक है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो ये सब चीजें होती हैं इस पे, जो अगर कोई फिल्म बनती है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए अब आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्यासा सावन का गाना। तो गाने के बोल जरा गुनगुना दूँ क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल गुनगुना दीजिए।
0: गाने के बोल है जी। मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे मत पर दे।

अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं अभी कौन सी सखी है हमारे साथ। हेलो सहेली।

0: नमस्कार राधे राधे मैम। हेलो सहेली।
1: नमस्कार। तो बताइए पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
0: मैं त्रिपुरा से संगीता देवव्रत बोल रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा। गांव
1: अच्छा,
0: का नाम है चंदीपुर।
1: अरे वाह, तो आप त्रिपुरा से बोल रही हैं संगीता जिया। तो आप बताइए कि आप क्या करती हैं।
0: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ। हम लोग घर में 3 लोग हैं।
1: अच्छा, तो आपको बच्चा छोटा है कि बड़े हैं।
0: मैं घर में सबसे छोटा बहू हूँ और मेरा एक ही लड़का है।
1: हाँ, तो बेटा छोटा है आपका।
0: वो बीएससी में पढ़ती है कॉलेज
1: अच्छा अच्छा
0: में।
1: बीएससी में। नहीं, बड़ा बेटा है। तो आपको कुछ याद है अपने बेटे के बचपन का? जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त को मनाया जाता था, जिस तरह से, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो कुछ यादें हैं
0: तो
1: आपकी?
0: वो तो स्कूल में जाया करती थी। साथ में मैं भी जाती थी उसको लेके।
1: हाँ,
0: तो उसको कभी कभी गाना भी गाना पड़ता थी। बताती
1: अच्छा,
0: पड़ती थी मैम।
1: हाँ, अरे वाह।
0: तो मैम मुझे गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है शारदा।
1: शारदा।
0: लता दीदी ने गाया था इस गाने को। गाने
1: हाँ,
0: का बोल है आपका खत मिला शुक्रिया शुक्रिया।
1: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं गुजरात से बोल रही हूँ, नीलोफर।
0: अच्छा, नीलोफर बोल रही हैं आप गुजरात से। तो बताइए नीलोफर जी, आप क्या करती हैं?
1: मेरे पापा की राशन की दुकान है, और वेफर और आइसक्रीम ये सब भी हम लोग बेचते हैं
0: अरे
1: दुकान
0: वाह।
1: में।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे ना रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और टीवी देखना।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आज हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मुझे ना दामिनी पिक्चर का गाना सुनना है,
0: कौन सा वाला?
1: बिन साजन झूला
0: हाँ
1: झूलू मैं वादा कैसे भूलू,
0: वाह।
1: करता है ये मेरा मैं उनके गगन को छू लू।
0: गगन को
1: मैं
0: छू
1: गाना
0: लीजिए
1: कैसे
0: आप,
1: आया,
0: आपके पसंद का
1: हाँ
0: ये
1: बोली
0: गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे, मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, आप वसई से बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करते हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में हम 3 जन हैं, मेरे हस्बैंड पेटाउन में।
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है,
0: बड़ा।
1: कॉलेज जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: हाँ
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: या मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां वाइट कलर की पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आज भी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था बोलने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना है, तो
0: अच्छा,
1: हम किसी से कम नहीं मिले।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
1: हाँ, घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
0: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
0: अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
1: 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहता था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू

0: जो मिलते
1: मुझे यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है, हमें तो जाना जरूरी है.
0: जी, वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और दो मिलते थे तो
1: हाँ, वो लड्डू बहुत ज्यादा कीमती
0: एक
1: होते थे ना.
0: जी बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था, बाकी नहीं मिलता था टेस्ट वो।
1: बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना, वो एकदम मन में
0: जी
1: बस जाता था, है ना. और
0: जी
1: साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना, तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना,
0: हाँ,
1: जब
0: बहुत अच्छा
1: जनगणमन
0: लगता
1: शुरू
0: था
1: होता
0: उस
1: था.
0: समय की जो 15 अगस्त थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है उस
1: जाना है
0: चीज
1: हमें.
0: की। यूनिफॉर्म गंदी रहती थी तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाएं।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता था एकदम, देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना.
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय पे पहुंच गई हूँ।
1: देखिए, आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना. बात
0: जी
1: करते करते.
0: जी मेरी मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है.
0: हाँ, उन्हें बहुत पसंद है रेडियो, जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी, और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
1: जी
0: होती है अगर हेलो शैली में
1: हाँ
0: मेरी
1: हाँ
0: बात होती है तो। जी,
1: बहुत अच्छी बात है. आप बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती
0: कुमार शानू की आवाज है, कितनी
1: हैं.
0: हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
1: हाय,
0: की।
1: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
0: जी,
1: बढ़िया. चलिए आप सुनाते हैं, आपको
0: मेरी
1: पसंद.
0: मम्मी
1: आप
0: का नाम ले लूं?
1: हाँ बिल्कुल ले लीजिए.
0: मेरी मम्मी का नाम है सोहरम बाई, और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
1: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत. कितने

0: हेलो सहेली। तो
1: हेलो सहेली,
0: पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत
0: तो
1: पसंद है।
0: किचन में आपको खाना बनाना पसंद है, तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए
0: अच्छा। तो आपका पोता है कितना?

0: बड़ा
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी, इसलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना।
0: अरे वाह,
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया। और आपका नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ, इसीलिए भारती रखा गया है।
0: बहुत बहुत बहुत बधाई हो आपको,
1: बहुत
0: जन्मदिन की अग्रिम बधाइयाँ।
1: फोन लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए, आज हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला गाना, कभी पिक्चर का गाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ,
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद
0: सावन का
1: है
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल,
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ में।
0: हाँ।

0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताना चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका एक तो रोहित है, और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: पहले बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी
1: हाँ
0: बोल रही हैं। तो ये बताइए उज्ज्वला जी, आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला है,
1: रही है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता
1: हाँ
0: है ये सब चीजें?
1: हाँ
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा
1: जाना
0: ना।
1: जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो
1: आते
0: क्योंकि
1: हैं
0: वहां पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है
1: अच्छा,
0: ये।
1: बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
2: आपके

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं धनु जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है?
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे?
1: 15 अगस्त तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: उठता था,
0: हाँ
1: नाश्ता वास्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले

0: लड्डू की याद है आपको?
1: हाँ पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ तो, हम वहाँ
0: हाँ
1: के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ
0: झंडा
1: लड्डू
0: फहराया जाता था, है ना?
1: झंडा फहराया जाता था, सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग को स्कूल, सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है
1: हाँ
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा, अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी

0: 02-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि

0: ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
2: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियां जीवन में ना जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना सजा देते हैं आपके चेहरों पर मुस्कान। जानती हूं मैं कि जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी होती हैं। हमने ना जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, जातक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और ये सब कहानियां सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियां हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे वतन के लोगों, ए वतन ए वतन। तो चलिए ना क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीरगति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है।

हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह रहे हैं।

0: साथियों।
1: दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए ही उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती

हर्षदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं थी। अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं? अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है, वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया जरूर। अच्छा मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर वे बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू? कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंध करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे, बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था, उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां। और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया, बहुत छोटी सी थी वो। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी, डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था, और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था, इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी, एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे, गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया।

उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से, पापा पापा इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने, मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा, मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी, और ना पापा मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है पापा मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी, लेकिन अब मैं बताऊंगी मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूं। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा, पापा पापा पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शुभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मेजर चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शुभा ने और रूनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रूनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियो

सॉरी पापा, नहीं, बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा, अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया, ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं? तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच, अब कोई गम नहीं। मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए? कुछ कर सकता हूँ भैया? रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया, आप लेट हो गए। अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन। हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरे मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती, कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुलटा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़ियां और पड़ियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा, मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए इस गाने पर मेरे साथ नाचने लगे थे।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहाँ गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड ना, मैं नहीं रोऊंगी। क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना हाँ। और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

पापा, अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा, मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा, मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। अरे पापा, आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपकी मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं, मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी। और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ, आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा, चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा, मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा, आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना? 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फिनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा, अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फिनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा, अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।

0: करते जैसे अरियल टट्टू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी, और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुछ आलू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी, लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्व बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टो, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है, लेकिन हम मन्नू कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना, हमारी मन्नू हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई, बुआ कह रही थी ना बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह से लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी, कितना प्यार किया था।

आप पहले आते थे ना, तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकालकर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे, लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे, या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका, आप आगे कुछ कहते, उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपके मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब मानविका बन गई है भाई वो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई, मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे, मम्मा ने लाड़ से कहा। अले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती, पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई। बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही, मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे, भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी, आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा, निशित कैसा है। जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया, पापा मेरा सपना तो ये है अब। मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती, दुखी होती, तो आप कहते, क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूँ, और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते। याद है ना वो गाना।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने उस सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। 1 महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने।

दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी सभी मानविकाओं पर हमें गर्व है, उनके परिवारों पर गर्व है। उन सभी के परिवारों को एक गाना समर्पित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CA वन विभाग सरगुजा।

0: बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चोका का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंड्रा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कनकपुर, रामपुर, लुर्गी, महावीरगंज, पेंडारी, मेंढारी, कोटराही, मदनपुर, धंधापुर, उधवा कटरा, कुंदी कला, रेवतपुर, छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, जोरी, बिल्मा, रघुपुर, ढेकी डोली, नवापारा, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, बन कोम्बो, सारंगडांड, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाब, देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 64 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बैगामार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, पूंजी पथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरी पानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, नवागांव, तालदादर, कौहा बहरा, छताल डबरा, मुरुम डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं। हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले।

0: जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:05 में लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए, हम आपको सुनाएंगे 5:30 पर और इसका शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00, 6:10 पर सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:45 पर। आज शाम 7:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। संबोधन कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात आप सुनेंगे कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा जैविक गृहवाटिका, स्वास्थ्य के साथ समृद्धि भी। सुनेंगे नसीहत, फर्टिगेशन के माध्यम से पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं। गैर फिल्मी गीत 8:20 पर, 8:30 पर सुनेगा फिल्मी संगीत। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण रात्रि 9:00, विविध संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: एक सूचना सुनिए। एक अज्ञात पुरुष उम्र 65 से 70 वर्ष बड़े डुमरपाली के अंबेडकर नगर नहर के पास मृत अवस्था में पड़ा है। पता चला है कि उक्त मृतक चपले और आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। शरीर से वृद्ध कमजोर है कि सूचना पर थाना खरसिया के मर्ग क्रमांक 64/2025 चाक पर पंचनामा कार्यवाही कर जांच किया जा रहा है। उक्त अज्ञात मृतक पुरुष के संबंध में अभी तक वारिसान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फीट, रंग सांवला, सिर में सफेद बाल हैं, दाढ़ी में सफेद लंबा बाल है, शरीर में भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ पाया गया है। इसके अलावा एक और सूचना सुनिए। दिनांक 9/2025 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से मर्ग संबंध में डॉक्टर द्वारा लिखित तहरीर पर थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर शव को ससम्मान कफन दफन कराया गया है। घटना क्षेत्र खरसिया होने से डायरी प्राप्त किया गया है। मृतक गोविंद राम चौहान उम्र 60 वर्ष का ग्राम कुनकुनी के हर मोहल्ला में एवं आसपास गांव में वारिशान का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, सिर में बाल नहीं है, पतला दुबला है, शरीर में भगवा रंग का कुर्ती सफेद रंग का पजामा पहना हुआ पाया गया है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम भजन संध्या में अब पहले हम आपको सुन पा रहे हैं अनूप जलोटा के गाए हुए इस भक्ति गीत को।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या में आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा, संगीत है शांक और नील का।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए अनूप जलोटा के गाए हुए इस भक्ति गीत को सुनते हैं।

0: अनूप जलोटा के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के आज के अंक में मैं हूं आपका दोस्त दीपक। तो कार्यक्रम में होंगी आपसे बातें, जानेंगे आपकी फरमाइशें, तो फरमाइशों और बातों का ये सिलसिला शुरू करें और उठाएं पहला कॉल, देखते हैं किन्होंने कहां से फोन किया है। कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
2: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: शिवराम ब्रेड बोल रहा हूँ सर।
1: ब्रेड जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: कहाँ से बोल रहे हैं ब्रेड जी?
2: खाल नवा पारा।
1: ओके,
2: बढ़िया त्यौहार मना रहे हैं सर, 15,000 तक की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अच्छा, क्या फरमाइश है आज?
2: ये देश रंगीला रंगीला करके गाना है, एक उसको देशभक्ति गीत है, उसको सुना दीजिए।
1: फोन करने के लिए आपका धन्यवाद देवराम जी।
2: धन्यवाद।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए, में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, नमस्कार सर। लोकेंद्र
0: नमस्कार
1: वर्मा
0: जी।
1: बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: मध्य प्रदेश से आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी जी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी, बताइए।
1: जी सर जी, आपका प्रोग्राम मैं मोबाइल के माध्यम से सुनता हूँ सर।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है। कब से सुन रहे हैं कार्यक्रम?
1: सर करीब 1 साल से सुन रहा हूँ सर, शाम को प्रसारण होता है।
0: सिर्फ 15 अगस्त के लिए ये 5:30 से 6 पहला भाग
1: जी
0: और 6:20 से 6:45 तक आप इसका दूसरा भाग सुन सकेंगे।
1: जी जी बिल्कुल सर जी। सर
0: ठीक है, तो फरमाइश बताइए फिर।
1: जी ये फरमाइश रहेगी मेरी, अभी जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर हमारे जो देश के भारत के वीर जवान है, जो हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उन्हीं को समर्पित सॉन्ग रहेगा। ये फिल्म का नाम बॉर्डर पिक्चर का कोई सा भी गीत चला दीजिए।
0: अच्छी फरमाइश है आपकी। चलिए, आप तक आपकी ये फरमाइश जरूर पहुंचेगी। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए, फिर सुनिए।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरे तरफ से बोल रहा हूँ सर, आपको अपना साथी सुरेश कुमार सारथी दे
0: सुरेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: देता है वार्ड क्रमांक 20 से।
0: चलिए, फरमाइश क्या है आज आपकी?
1: अब क्या है, आज हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो हरेली का पर्व मनाया जा रहा है सर। इस पावन दिन में हम सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र की पूरी यूनिट को बधाई देते हैं सर।

0: आने वाले 15 अगस्त तक भी आपके चैनल के सभी परिवार को कोटि कोटि बधाई।
1: हम सभी की तरफ से आपको भी हरेली की और आने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व की आपको ढेरों बधाई।
0: जी सर, पूरा और पश्चिम सर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यही गीत हम सुनना चाहेंगे।
1: बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। देशभक्ति गीत है सर।
1: हाँ हाँ जी।
0: हाँ।

ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ,

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
5: जी नमस्ते।
4: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
5: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
4: प्रेम सिंह जी, उज्जैन से?
5: जी हाँ।
4: ठीक, कैसे हैं प्रेम जी?
5: जी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
4: बोलिए, हमको भी खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा
5: जी, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी 3-4 दिन से अच्छी बारिश हुई है।
4: अच्छा अच्छा, अच्छी बारिश है। हाँ, लगभग पूरे
5: बताऊँ,
4: कम ज्यादा कर लगभग पूरे देश में ही अभी अच्छी बारिश है। अच्छा, क्या सुनना चाहते हैं?
5: बारिश का दौर है और अभी 15 अगस्त भी आ रहा है
4: जी,
5: तो आप सुनवा दीजिएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
4: फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी,
0: कार्यक्रम में स्वागत है
1: नमस्कार।
0: आपका।
1: नमस्कार सर जी,
0: नमस्कार जी, बताइए।
1: मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ सर जी।
0: कवर्धा से ही श्रवण जी,
1: जी
0: क्या करते हैं श्रवण जी?
1: मैं शिक्षक हूँ सर, मिडिल स्कूल का शिक्षक हूँ, और मैं आपके रायगढ़ केंद्र को का नियमित श्रोता हूँ। पूरे कार्यक्रम को लगभग मैं सुनता रहता हूँ। जैसे चौपाल है, चौपाल में हमारा लोकगीत है, आपका चिट्ठी मिली है, और लोक रंजनी है, माटी के गीत है, ये सभी कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ।
0: अच्छी बात है, हमको खुशी हुई ये सुनकर। और हम आपसे जानना चाहेंगे मदन श्रवण जी, कि
1: जी,
0: राष्ट्रीय पर्व की क्या तैयारियां हैं आपके यहाँ?
1: राष्ट्रीय पर्व की तैयारी तो बड़े धूमधाम से होते हैं सर, इस आजादी के जश्न को मनाने के पीछे। और गांव में प्रभात फेरी फेरी निकाली जाती है सुबह, उसके बाद सभा होती है और राष्ट्रीय ध्वजारोहण होता है, फिर मिष्ठान वितरण किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है इस स्वतंत्रता दिवस की यादगार में।
0: चलिए, अच्छी बात
1: और
0: है।
1: हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद किया जाता
0: हमारे कर्तव्य है वो,
1: है। जी,
0: बिल्कुल हम
1: कर्तव्य।
0: करना ही चाहिए। अच्छा, क्या फरमाइश है आज के लिए?
1: ये फिल्म कर्मा का सुना दीजिए सर,
0: हाँ
1: ये वतन मेरे, देशभक्ति की सुना दीजिए।
0: ठीक है, इस फरमाइश के लिए आपको धन्यवाद, फोन करने के लिए भी धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला भाग। इसका शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2,500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। संध्या के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय होगा 6:10। कृषि मंच प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। रामचरित मानस का प्रसारण वक्त होगा 6:40, देशगान 6:50 पर। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण। नौ बजे सुनिएगा विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। सुगम संगीत 10:10 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश 10:30 पर विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 11 बजे से और पुनः 12 बजे से शाम 5 बजे तक। कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप टाइम 5:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की बात ओजस मेहता के साथ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:20 पर। 5:30 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम होगा वनिता विहार। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6 बजे 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। 6:20 पर रायगढ़ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुतकर्ता होंगे रवि आनंद। 6:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार 6:45 पर फिल्म

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। काली मनाए जाही 80वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री है लाल किला में तिरंगा झंडा फहरा के देश लकर ही संबोधित। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आए, ये मौका में देश है विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया मल्ल देवत है श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाँ अबले थोड़ी देर बाद संझा 7 बजे देश के नाव संबोधन करही। अब समाचार विस्तार ले। काली हमर देश हा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाही, ये मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मा तिरंगा झंडा फहरा के देश ला संबोधित करही। एति छत्तीसगढ़ मा स्वतंत्रता दिवस के मौका मा राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड मा आयोजित करे जाही, जिहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तिरंगा फहरा के परेड के सलामी लिही। उहे बिलासपुर मा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर मा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा झंडा फहराही। एति विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव मा ध्वजारोहण करही। प्रदेश के आने आने जिला मुख्यालय मा मंत्री, सांसद और विधायक मन झंडा फहराही और सबो मन मुख्य अतिथि मन ये मौका मा मुख्यमंत्री के संदेश वाचन करही। बता दन की स्वतंत्रता दिवस समारोह ले पहली खेल और युवा कल्याण विभाग डहर ले आज आने आने जिला मा स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन करेगी। इही बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड हा राज्य भर के जम्मो मस्जिद, दरगाह और मदरसा मन मा घलो तिरंगा फहराए के अपील करीस है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राजा बताइन कि 15 अगस्त के पर्व देशभक्ति, एकता, भाईचारा और संविधान के प्रतीक सम्मान के संग मनाया जाना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौका मा विधानसभा भवन काली नागरिक मन बर बिहनिया 10 बजे ले संझा 5 बजे तक खुले रही। स्वतंत्रता दिवस के मौका मा राज्यपाल रमेन डे कहा प्रदेशवासी मल्ला शुभकामना देन है। उमन देश के स्वतंत्रता बर अपन सर्वस्व न्योछावर करैया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के रक्षा करत शहीद होए वीर जवान मल्ला नमन करीन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संझा देश के नाव संबोधन करही। राष्ट्रपति के संबोधन अबले थोड़ी देर बाद संझा 7 बजे आकाशवाणी के सबो राष्ट्रीय चैनल में प्रसारित करे जाही। यह दूरदर्शन के सबो चैनल में हिंदी में प्रसारित होही, जेखर बाद एकर अंग्रेजी संस्करण घलो प्रसारित करे जाही। हिंदी अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद एकर क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल में करे जाही। केंद्र सरकार हा स्वतंत्रता दिवस के मौका मा पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के संग सुधार सेवा के 1057 कर्मी मल्ला वीरता और सेवा पदक दे बर घोषणा करे है। गृह मंत्रालय हा आज वीरता पुरस्कार के 301 पदक मन के सूची जारी करी से, एमा पुलिस कर्मी मन बर 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मी मन बर 29 पदक शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारी मल्ला वीरता पुरस्कार ले सम्मानित करे जाही। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मा बर ये जवान मन के प्रदर्शन और साहस के सेती ये सम्मान दे जाही। ऐसो देश भर में सबले ज्यादा वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस ला मिलत है। एकर अलावा पुलिस उप

0: महानिरीक्षक मोतीलाल कोटवानी ल उंखर विशेष सेवा बर राष्ट्रपति पदक प्रदान करे जाही। संगे संग राज्य के 10 झन पुलिस अधिकारी मन ल घलो उंखर सहरौक सेवा बर राष्ट्रपति पदक ले सम्मानित करे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अगुवाई में मुंगली जिला के लोरमी इलाका के गांव और नगर में तिरंगा यात्रा निकाले गीस। मोटरसाइकिल ले निकाले गए ये तिरंगा यात्रा लोरमी के पुराना बस स्टैंड ले शुरू होके दाऊ कापा पहुंचीस। उहे नगर में मानस मंच ले शुरू हुए तिरंगा यात्रा मुंगली चौक, हटरी चौक, नवा बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड ले होके गुजरीस। ये दौरान श्री साव हा स्वतंत्रता सेनानी और वीर शहीद मन ला नमन करत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हर नागरिक के भागीदारी के संकल्प लेन। उहे तिल्दा की तिरंगा यात्रा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल होइन। ये बेरा ओमन तिरंगा के महिमा और देश के गौरवशाली इतिहास ल सोरियावत कीहिन कि तिरंगा के हरा रंग शांति, खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक आए। उन्हें अशोक चक्र सरलक प्रगति के संदेश देते। तिरंगा हमर एकता और अखंडता के प्रतीक है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बार्थन बांची समाचार कोती। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आय। ये मौका मा देश हा बछर 1947 के विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया और पीरा झेलैया जम्मो लोगन ला श्रद्धांजलि देवत हे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा विभाजन ले प्रभावित सबो लोगन के साहस ला सुरता करिन। सोशल मीडिया पोस्ट मा प्रधानमंत्री हा कहिन कि हमन विभाजन ले प्रभावित सबो लोगन के साहस ला सुरता करथन। इतिहास के वो क्षण जेह कतकोन जिंदगी ला तहस नहस कर दिस, अपन सगा संबंधी दुरियागे और असहनी पीरा घलो सहेल परिस। श्री मोदी हा कामना करिन कि ये दिन हा हमर देश मा सद्भाव और भाईचारा ला बनाए रखे के संकल्प ला और मजबूत करही और हम सब मिलके विकसित भारत निर्माण के दिशा मा आगू बढ़बो। एति छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग डहर ले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौका मा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन करेगीस। राजधानी रायपुर मा आयोजित कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होइन। ये बेरा मुख्यमंत्री हा घलो विभाजन के पीरा ला सोरियाइन। कार्यक्रम ला प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी हा घलो संबोधित करीन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सुरक्षा बल के क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर के टीम हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस ले करीबन 1,96,00,000 रुपया के विदेशी सोना बरामद करे है। RPF क्राइम ब्रांच नागपुर ला मिले सूचना के आधार में रायपुर और नागपुर के टीम DRI के संग मिलके रेलगाड़ी में जांच अभियान चलाइस। यही बेरा भंडारा और नागपुर के बीच रेलगाड़ी के B12 कोच में 2 संदिग्ध यात्री पकड़े गिन। तलाशी के बेरा उंखर तीर ले करीबन 1,242,00,000 विदेशी सोना बरामद होइस, जेमा 7 सोना के बिस्कुट और 1 सोना के छड़ मिलिस। उत्तराखंड के चमोली जिला में निर्माणाधीन मायापुर पीपल कोटी टनल में काली संझा कुन अचानक पानी भरे ले छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूर मन के मौत होगीस। उन्हें टनल ले 22 मजदूर मन ला सुरक्षित निकालेगीस। हादसा में 11 घायल बताए जावत हैं। इमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2, पंजाब और हिमाचल के 1 मजदूर शामिल हैं। 6 मजदूर अभी घलो लापता बताए जावत हैं। इति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चमोली के सुरंग हादसा में श्रमिक मन के मौत पर दुख जताइन हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW नगरी प्रशासन और विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा के खिलाफ करीबन 1500 पन्ना के चालान रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश करीस। मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा ऊपर बछर 2019 ले 2023 के दौरान पद के दुरुपयोग और कथित अवैध कमीशन के रूप

0: फायदा पाए के आरोप लगाए गए हे। शिकायत ले आने आने नगरी निकाय मा निविदा कारज देवाए बर और बिल के भुगतान के एवज मा कथित 25% कमीशन के मांग करे गे रहीस। ईओडब्ल्यू की जांच मा कुल 1,76,00,000 रुपया ले ज्यादा के फायदा पाए गिस। वहीं जसपुर जिला के कुनकुरी मा 21 बछर जुन्ना चाउर घोटाला मा ईओडब्ल्यू हा करीबन 40,000 पन्ना के चालान जसपुर के विशेष न्यायालय में पेश करी से। ये मामला मा बछर 2005 मा कुनकुरी के छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम में भंडारित चाउर के कमती ले जुड़े है। जांच मा गोदाम के वास्तविक स्टॉक और अभिलेख मा दर्ज चाउर के मात्रा मा भारी अंतर पाएगीस। विस्तार ले जांच मा गोदाम मा 22,198 क्विंटल ले ज्यादा चाउर के वास्तविक कमी निर्धारित करेगीस। एकर ले सरकार ला करीबन 2,50,00,000 रुपया ले ज्यादा के आर्थिक नुकसान होना पाएगीस। और आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। काली मनाए जाही 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री है लाल किला मा तिरंगा झंडा फहरा के देश ला कर ही संबोधित। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। ये मौका मा देश है विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया मन ला देवत है श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा अबले थोड़किन देर बाद संझा 7 बजे देश के नाव संबोधन कर ही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: ईएम आकाशवाणी
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग।
3: हेलो कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए। हेलो हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं मानिकपुरी जी?
4: सर
3: कैसे हैं मानिकपुरी जी? कैसे हैं? अच्छे हैं, चलिए जानकर खुशी हुई। और क्या सुनना चाहते हैं आज?
4: आकाशवाणी परिवार और पूरा श्रोता भाई मन को रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ सर।
3: आपको भी, आपको भी हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। क्या सुनना चाहते हैं?
4: इसी देशभक्ति गाना है सर
3: जी, बताइए।
4: हिंदुस्तानी का सुना देता सर।
3: टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
4: जी सर, देशभक्ति है सर।
3: आप तक आपकी ये फरमाइश जरूर पहुँचेगी। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद
4: जी सर। धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
1: हेलो,
0: हाँ स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी। सर जी प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं राजू यादव, ग्राम उपरन काशी रामपुर डेरा सरी लराठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। आपका ये लहजा बहुत अच्छा है राजू यादव जी।
1: हमने ये बोलना रेडियो से ही तो सीखा था।
0: चलिए अच्छी है, अच्छी बात है। और फिर बताइए फरमाइश भी वैसी ही।
1: फरमाइश तो सर जी अब हमारी फरमाइश रहेगी, मूवी का नाम रहेगा राजा।
0: राजा
1: जो तो तुझे लगती तो दर्द मुझे होता, आके तेरी फड़के तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई मैं किसर ये होता है।
0: रक्षाबंधन पर ये गीत आप सुनवा रहे हैं। चलिए अच्छी अच्छी फरमाइश है, आपको धन्यवाद।
1: सर प्रणाम,
0: प्रणाम प्रणाम,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: आपको भी हमारा नमस्कार, बताइए।
1: मैं नवागढ़ कटक जिला बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: वर्मा जी, आप तो हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं।
1: जी सर, जी सर, हम तो आप लोगों का कार्यक्रम सुनते रहते हैं और आप लोगों का जो प्यार है वो हमसे कभी तो रुक नहीं सकती। जब जब भी हम बात करते हैं बड़े प्रेम से बात करते हैं, आप और आपके जितने भी आप जी हैं उद्घोषक हैं।
0: ये प्रेम ही
1: जी
0: आपको
1: सर,
0: हमको
1: जी
0: बांधे रखेगा नारायण जी,
1: सर, जी सर,
0: और
1: जी सर,
0: यही यही हमारी पूंजी है और यही हमारा ताकत है।
1: सर जी। और आगामी अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस का पर्व आने वाला है सर जी, तो आप सभी दोस्तों को और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ सर जी।
0: हम सभी की तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को बधाई। चलिए
1: जी सर
0: फरमाइश
1: जी, फिल्म
0: बताइए।
1: क्रांति का गाना सुनवा दीजिए ना सर जी, चना चना चूरे गरम बाबू मैं लाए मजेदार वाला।
0: लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: हाँ सर जी, हाँ सर जी, ठीक है सर जी,
0: चलिए
1: धन्यवाद
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम जरूर आप तक तो पहुंचाएंगे। फोन करने के लिए आपका
1: सर
0: धन्यवाद।
1: जी, हाँ सर जी, धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: अभी आई होगी कि जाने देना सिरवा बांधा देना तरह से बोल रहे हैं
0: बेमे तरह से कौन बोल रहे हैं?
1: योगेश जाने
0: योगेश जी, चलिए आपके पत्र तो हम तक आते हैं। हाँ,
1: जी।
0: तो कैसे हैं बताइए।
1: बढ़िया है, भी अच्छा है।
0: अच्छा है, और क्या क्या सुनते हैं हमारे यहाँ से, केंद्र से?
1: अभी तो हम रायगढ़ से जुड़े बहुत दिन हो गए हैं और इनका कार्यक्रम हेलो संगवारी काफी अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम।
0: नहीं, छत्तीसगढ़ी के सभी अच्छे गाने बहुत हमारे केंद्र से बहुत बजते हैं। चलिए, आपको पसंद आते हैं, इस ये हमारी खुशी की बात है। आपका धन्यवाद। और बताइए, फरमाइश कौन सी है आपकी? तकनीकी

0: कारण से आपकी पूरी बात हम नहीं सुन सके, लेकिन आपकी फरमाइश हम जरूर, आपका ये फोन कॉल कार्यक्रम में जरूर शामिल होगा। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी सर। नमस्ते,
0: नमस्ते जी।
1: मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ,
0: हाँ जी, उड़ीसा से कौन
1: जिला
0: बोल रहे हैं?
1: कालाहांडी, भैया भवानी पाटना, गांव का नाम जगन्नाथपुर। मैं रेडियो पार्टनर चित्रसेन बोल रहा हूँ।
0: चित्रसेन जी,
1: हाँ जी,
0: चलिए, भवानी पटना से।
1: हाँ जी, भवानी पटना से बोल रहा हूँ। और आप कैसे सर?
0: हाँ जी, आपके तरफ कैसे हैं सब, बताइए।
1: हाँ जी, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ।
0: चलिए, क्या करते हैं चित्रसेन
1: मैं
0: जी?
1: होटल चलाता हूँ सर। हाँ जी, समोसा बनाते हैं, बीरी बड़ा बनाते हैं, आलू चप बनाते हैं,
0: अरे वाह, आप
1: और
0: तो,
1: मालपुआ जलेबी, और
0: हाँ
1: छेनापोड़, गुलाब जाम, और गजा लबंग लता बनाते हैं सर।
0: हाँ मुंह में पानी भी आ रहा है और पेट भी भर गया।
1: हाँ जी
0: चलिए बताइए, फरमाइश बताइए, फरमाइश बताएंगे,
1: हाँ जी,
0: बताइए क्या सुनना चाहते हैं।
1: मीरा का मोहन का गाना सुना दीजिए। सारी दुनिया प्यारी, एक गाना सुना दीजिए सर।
0: हाँ, तो आपके हाथों के साथ साथ आपके गले में भी मिठास आ गई
1: हाँ जी, धन्यवाद
0: है। चलिए, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: सर, रहते हैं, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए कि आज के अंक में मैं था आपके साथ आपका दोस्त दीपक। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा भूपत सिंह धुर्वे का, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल का, संचालन में मैं था आपका दोस्त दीपक और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद। कार्यक्रम के आज के अंक से अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: करने का भी है,
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब।

0: अब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। आज मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्यभर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और दरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति, आपसी एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन नागरिकों के लिए कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता पुरस्कार के 301 पदकों की सूची जारी की। इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। 141 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वीरता पदक के लिए चुने जाने वाले प्रमुख अधिकारियों में बस्तर रेंज के आईजी रहे सुंदरराज पी, आईजी इंदिरा कल्याण एलेसिला, एसएसपी संदीप पटेल और एएसपी रॉबिन्सन गुड़िया शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक मोतीलाल कोटवानी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य के 10 पुलिस अधिकारियों को भी उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाजन के समय विभिन्न समाजों को विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी थी।
4: विभीषिका है, हर साल पूरा देश स्मरण करे, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज ने, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है, उसको याद करते रहेंगे।
3: कार्यक्रम को प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति के इस महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर तिरंगा यात्रा आज बीजापुर जिले में स्थित करेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न हो गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने करेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश दिया। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। बीते बुधवार को नारायणपुर से शुरू हुई यह यात्रा 3 दिनों के दौरान बारसूर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा का जगह जगह आम नागरिकों ने स्वागत किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन मायापुर पीपलकोटी टनल में कल शाम को अचानक पानी भर जाने से छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टनल से 22 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे में 11 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। इनमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब और हिमाचल के 1-1 मजदूर हैं। 6 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में श्रमिकों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कोंडागांव के श्रमिक भी असमय काल कवलित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। लापता श्रमिकों की तलाश के प्रयासों पर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा के विरुद्ध करीब 1500 पृष्ठों का चालान रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया है। भागीरथी वर्मा पर पद का दुरुपयोग और कथित अवैध कमीशन के रूप में 1,76,00,000 रूपये का लाभ प्राप्त करने का आरोप है। वहीं जशपुर जिले के कुनकुरी में 21 वर्ष पुराने चावल घोटाला प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 40,000 पृष्ठों का चालान जशपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर की टीम ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर भंडारा और नागपुर के बीच ट्रेन में 2 संदिग्ध यात्रियों को पकड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। आज मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला महत्वपूर्ण प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क चांद देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने

संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्श के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर
प्रभाव पड़ रहा है।

ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुकान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है।

लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिले।

आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्यलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड एब्रॉड celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's Address to the Nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी

0: सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी सबो झल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। और संगवारी हो, आज के हमन चौपाल कार्यक्रम में आगे हन कहा और देखा हमला बखत बेला के हिसाब ले चले बा लागथे कहा। तो आज के बाद के विषय हवे संगवारी हो जैविक गृह वाटिका स्वास्थ्य के साथ समृद्धि भी। तो संगवारी हो जैविक गृह वाटिका यानी कि बाड़ी यानी अपन घर के अंगना बाड़ी या छत में बिना कोनो रासायनिक दवाई और खाद के शुद्ध साग सब्जी उपजाना। यह न सिर्फ हमर और हमर परिवार के स्वास्थ्य ला तंदुरुस्त रखते बल्कि घर के आर्थिक समृद्धि में घलो बड़े ही मदद करते। संगवारी हो ये जो जैविक गृह वाटिका है यह स्वास्थ्य पर फायदा करते। रसायन मुक्त ताजा साग भाजी मिलते एकल ले बाजार में जो मिले वाला साग भाजी में तरह तरह के जहरीला रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई मन के असर रहते। घर के बाड़ी में उपजाए भाजी पाला एकदम शुद्ध ताजा और सेहतमंद रहते और भरपूर पोषण और विटामिन रहते। ये जैविक गृह वाटिका ले उपजाए हुए जो साग सब्जी है ओमा अपन गृह वाटिका ले हमन रोज ताजा पालक लाल भाजी खट्टा भाजी मिर्च टमाटर या धनिया हमन हमला मिल जाते जेकर ले शरीर ला भरपूर पोषण मिलते और बीमारी मन ले लड़े के क्षमता भी बढ़ते और शारीरिक कसरत और मानसिक शांति भी मिलते। रोज बिहनिया मंझनिया बाड़ी में काम करे ले शरीर के कसरत हो जाते और मन ला शांति भी मिलते और तनाव दूर होते। समृद्धि पर भी फायदा हवे घर के खर्चा में बड़े बचत होते। रोज रोज बाजार ले महंगा साग भाजी बिसाए के खर्चा बच जाते जेकर ले हर महीना थोरकून पैसा के बचत भी हो जाते। और ये जो जैविक गृह वाटिका है ओकर से हमला अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाते। यदि बाड़ी में जरूरत ले ज़्यादा साग भाजी उपज जाते हो जाते तो ओला आसपास के संगवारी या फिर बाजार में बेच के अतिरिक्त हमन कमाई भी कर सकत हन। तो संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच के क्रम भी रहे थे तो आज के प्रश्न ला लिख लेव जैविक गृह वाटिका ले का लाभ होते। एक बार और लिख लेव सुन लेव प्रश्न ला जैविक गृह वाटिका ले का लाभ होते। तो एक उत्तर आप मन जरूर लिख के भेजे संगवारी हो और भेंटवार्ता के भी क्रम रहे थे तो आवा भेंटवार्ता सुनबो। खेती किसानी के साथ दुग्ध उत्पादन से लाभ ये विषय में द्रौपदी नायक ग्राम अमुर्रा विकास खंड बरम केला से हो रही से मोर भेंटवार्ता तो आवेला सुनबो। संगवारी हो हमार आकाशवाणी रायगढ़ के सार्थक प्रयास रथे प्रगतिशील किसान और किसानिन मन ले भेंट करे के। तो मैं यही भेंटवार्ता के क्रम में भेंट करत हूँ एक किसानिन बहनी ले जोन मान घर के पुता काम ला निपटा के पशुपालन के काम ला बहुत ही अच्छा सुघर तरीका ले करत है। तो बहनी आप मन ला मोर कोती ले राम राम जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: आप मन के नाम बताहा।
1: मन्ना द्रौपदी नायक।
0: हाँ हाँ।
1: ग्राम अमुर्रा के हूँ मैं।
0: हाँ हाँ। तो बहनी आप मन अभी का बूता काम करा था।
1: मैं खेती किसानी भी करता हूँ घर के काम रंधाई कुटाई सब करता हूँ गरवा गाय भी पालन करता हूँ।
0: अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है। आप मन घर के बूता काम ला भी निपटा के घर में पशुपालन भी करा था है ना और साथ में खेती किसानी भी कर लेता
1: हूँ।
0: अच्छा तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी आप मन के ठी गाय रखे है।
1: अभी 12 ठी।

0: थी।
1: हाँ
0: अच्छा, सब वो गाय की पीला भी है।
1: पीला भी है, छठी हर पी मने गाय है, चाटी पीला है। हाँ
0: अच्छा, छठी गाय है, चाटी पीला है।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो अभी कतक लीटर दूध हो जाते?
1: अभी 45 से 50 लीटर।
0: अच्छा, 45-50।
1: हाँ
0: हाँ, तो सबो गाय मन अभी दूध दे थे कहा?
1: नहीं चाटी मन दे थे। हाँ
0: चाठी मन दे थे। हाँ, तो एमन का नस्ल के? हाँ
1: दूठी है जैफ है, दूठी गिर है
0: हाँ
1: और जर्सी है भी और देसी वाला दूठी
0: अच्छा,
1: है। हाँ
0: सबो किस्म के है कहा?
1: हाँ
0: हाँ, तो इस मतलब इस सबो ला अलग अलग मतलब कैसे रखे हैं?
1: बढ़िया एक ठिठान लाइन बनवा के रखे हूँ।
0: अच्छा, तो सबके अलग अलग फायदा होते कहा?
1: हाँ देसी वाला के दूध अच्छा भाव में बेचते और बढ़िया रहते तक घर में भी ले जाते पूजा पाठ करे करके। अब एचएफ के है ज्यादा दूध होते तो हमें ज्यादा फायदा भी होती, ज्यादा दूध देते
0: हाँ,
1: करके
0: मतलब एचएफ ज्यादा दूध
1: ज्यादा
0: देते
1: दूध
0: कहा?
1: देते। हाँ
0: हाँ, तो ज्यादा फायदा मिलते
1: हाँ
0: कहा?
1: और गिर मनहर भी बढ़िया दे थी।
0: अच्छा। हाँ, तो गाय मलक कैसे खवा था पिया था?
1: सुबह एक बार देथन पैरा काट के दाना पानी देथन और एक शाम के देथन और मझनिया में पैरा दे देथन खाली।
0: अच्छा, सुबह पैरा कुटी।
1: हाँ बंद नेपियर
0: अच्छा,
1: नेपियर।
0: नेपियर घास लगाया है।
1: हाँ
0: अच्छा, नेपियर घास संग में पैरा
1: हाँ
0: कुटी खवा थन कहा?
1: हाँ
0: कोटना में डाल था कि सूखा खवा था?
1: कोटना में डालथन।
0: अच्छा, कोटना
1: हाँ
0: में।
1: हाँ
0: हाँ, ओकर बाद दाना भी खिला था?
1: हाँ दाना भी
0: अच्छा, और दोपहर में पैरा बसते था? अच्छा,
1: नहीं दाना भी देथन और पैरा कुटी फेर देथन शाम की।
0: शाम के
1: हाँ
0: और दोपहर में?
1: ओ मैं पैरा खाली पैरा देथन।
0: अच्छा। हाँ, तो बहनी आप मन बताया था कि पशुपालन के काम करा थन कहा था, है ना? तो
1: हाँ
0: इसमें बहुत ही अच्छा से लाभ मिला थे?
1: बहुत बढ़िया लाभ मिले थे।
0: अच्छा, अच्छा
1: हाँ
0: मिला थे कहा?
1: हाँ
0: हाँ, तो एकर बाद आप मन बताते रहे कि खेती किसानी के काम ला भी करथन कके, है ना?
1: हाँ हाँ
0: तो अभी खेती किसानी में का लगाए हैं?
1: अभी भाटा लगाए हैं और झुनगा लगवाए हैं कूला में
0: हाँ,
1: और टमाटर भी लगा था अभी पल्हा डाले हैं ऊपर पर
0: अच्छा, और धान भी लगा है का?
1: धान। हाँ पूरा खेत में धान करते हैं और टिकरा में भी धान करे हैं अभी।
0: अच्छा, खेत में भी धान लगा है
1: हाँ
0: और टिकरा में भी,
1: हाँ हाँ
0: और टमाटर के अभी थरहा लगाए हैं का?
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो भाटा जैसे लगाहन कहा था, तो भाटा लगाए बर खेत की तैयारी करना पड़ते, है ना?
1: हाँ हाँ
0: तो एला कैसे कैसे करते हैं?
1: एला जुताई कर लेते हैं गर्मी महीना में और
0: हाँ,
1: करमेड़ बना के रख ले रहे हैं ना वो पानी है बरसी से तो हम मौसम ठंडा हुई से तो ओला लगाए हैं 212 वाला भाटा ला।
0: अच्छा।
1: हाँ ग्राफ्टेड भाटा लगाए हैं
0: हाँ, तो पहली घाम महीना जुताई का, ओकर बाद मादा बना ले रहा है?
1: मादा लकीर लकीर करके मेड़ बना ले रहे हैं
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: मेड़ में पन्नी ओनी डाल दे हम तो
0: हाँ
1: हाँ में लगा ले हम कहे कि बंद पे चरण दे पर ज्यादा लागती नहीं रहेगी।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा, पन्नी लगा दे हन
1: हाँ
0: कहा?
1: हाँ
0: अच्छा, तो इमे अच्छा से ये भाटा हर फला थे?
1: अभी चालू हुई से हरे
0: अच्छा,
1: बार।
0: अभी
1: हाँ
0: चालू हुए से।
1: हाँ
0: हाँ, तो इमे रोग बीमारी भी लगते ना?
1: उतनी ज्यादा रोग बीमारी में नहीं लगे ग्राफ्टेड वाला भाटा में
0: अच्छा, इतनी ज्यादा नहीं
1: नहीं
0: लगे।
1: लगे। हाँ
0: दूसर भाटा में हर 8 दिन में दवाई छींचे लगते, है ना?
1: हाँ
0: ऐसे सुनाई देते।
1: हाँ लेकिन हम ज्यादा माने दवाई के उपयोग भी नहीं करन का बल्कि जहर वाला चीज
0: हाँ,
1: करके फिर ज्यादा नहीं छींचन
0: तो
1: ज्यादा।
0: आप मन जैविक खाद के उपयोग करता?
1: हाँ हाँ
0: अच्छा, जैविक खाद डालथन
1: हाँ
0: कहा?
1: हाँ
0: दवाई भी बना था?
1: दवाई नहीं बना बस
0: अच्छा,
1: हम
0: सिर्फ खाद।
1: हाँ खाद बना था।
0: हाँ, तो ये भाटा कतक दिन में फले फले के चालू हो जाते?
1: यह 1.5 से 2 महीना में चालू हो जाती।
0: अच्छा, तो आप मन लगाए हो कतका दिन हो गिस ना?
1: 1 महीना 10 दिन लगभग होती।
0: अच्छा, 1.5 महीना में फले के चालू हो
1: हाँ
0: जाते
1: हाँ
0: कहा? तो एक बार में कतक हो जाते लगभग?
1: मतलब वही हम थोड़े ज्यादा नहीं लगाए हैं 15-20 दिन लगाए हैं तो 2 दिन
0: अच्छा।
1: पैकेट उसने हो जाते
0: हाँ,
1: खा पिए
0: तो
1: बर करके उससे थोड़े मोड़े बेचे पर लगा था ज्यादा घाटा का नहीं लगा।
0: हाँ, तो एक बार तुड़ाई के बाद फिर अब कब तोड़े बलाक थे?
1: 4 दिन के बाद में फिर हो जाती ग्राफ्टेड जल्दी जल्दी बाढ़ जाती।
0: अच्छा, 4-4 दिन में तोड़े
1: हाँ
0: बलाक थे,
1: हाँ
0: और दवाई कैसे छिड़के बलाक थे? हाँ
1: हमन ज्यादा छींचन भी नहीं 15 दिन में तब से भी एक बार छींचतन का कि कढ़ा हो जाती है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उकरे बार।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: 15 दिन में एक बार।
1: हाँ हाँ
0: और जैसे पानी वानी के सिंचाई कैसे करे बलाक थे?
1: घर में है बोर कोलाच में है और कोलाच में लगा था सब्जी वाला तो
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा
1: दे देता
0: अच्छा
1: और
0: कोला
1: ड्रिप
0: में
1: में।
0: लगा?
1: हाँ ड्रिप में करी होना था वो बढ़िया होती है
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: हमने नहीं
0: हाँ
1: लगाया के ड्रिप।
0: अच्छा। हाँ, तो भाटा के खेती में आप मल्ला लाभ मिला थे?
1: हाँ बढ़िया मिल रही इस पहले तो ज्यादा जगह है ना अभी थोड़े कम जगह है लेकिन बढ़िया फायदा होती है भाटा में भी।
0: हाँ, तो बहनी आप मन इतनी अच्छा जानकारी दे था, है ना? तो आखिर में हमारे जो किसान संगवारी है ना, श्रोता,
1: हाँ
0: रेडियो सुनने वाला संगवारी है, वो
1: हाँ
0: मल्ला का कहना चाहता?
1: मैं कहा था घर के काम बूता निपटा के महिला मतलब पशुपालन करना चाहिए घर में सब्जी वब्जी निकाल लेना चाहिए और घर ल चलाना चाहिए महिला मन के हाथ में भी रहते
0: हाँ
1: ओकरे बार सब चीज ल करना चाहिए महिला ल भी।
0: हाँ हाँ दीदी, आप मन के बहुत ही बढ़िया विचार है कहा, और इतनी अच्छा जानकारी देवा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप

संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हवा आप मन के संगी सुमित्रा पटेल, और संगवारी हो काली हवे स्वतंत्रता दिवस। तो आज के हमारे लोक गीत हर ऐसे ही सजे हवे देशभक्ति गीत ले। तो मैं शुरू करा था वहाँ आप मन के फरमाइसी ये हमारे लोक गीत के क्रमला। और हमारे डहर आए हवे पहला ईमेल सावर गांव महाराष्ट्र ले रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे अनूपपुर मध्य प्रदेश ले, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट। रायगढ़ वार्ड नंबर 3 ले रोहित जयलक्ष्मी, बिरनपुर कला गंडई ले सुरेश कुमार साहू, मास्टर तन्मय साहू, खिलेश्वरी जंत्रीबाई साहू। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हमें रोशन देवांगन, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, गोलू साहू। छत्तीसगढ़ सहसपुर ले हमें छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, राम किशन साहू, दूली चंद साहू, सतीबाई साहू। और सत्यम बागबहरा भदरसी ले हमें पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ ले हमें पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले हमें शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास। ये सबो संगवारी मन पसंद करे हमें गीत। गीत के बोल हवे मैं बंधत हवा दिन रात, और ये गीत लगाए हमें लक्ष्मण मस्तूरिया। तो आवा संगवारी हो आप सबो के ये सुघर लोक गीत ला सुनबो।

हाँ तो संगवारी हो, हमन हमर लोकगीत के क्रम में हमन सुघर सुघर लोकगीत सुनाथन कहा। और हमर डहर अगला ईमेल आए हवे, ग्राम गोड़मर्रा पोस्ट सूर्यगांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ले देव प्रसाद देवदास, राम अवतार देवदास, सोनू मोनू और कुमारी ललेश्वरी देवदास। ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले राधे श्याम पांडे, वीड़ा पांडे, विनय शंकर पांडे। आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी ओसिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ ले हमें दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना सोनवानी, कुस्मिता, खिलेश कुमार, लालिमा, राजेंद्र, गीता और पीहू। और ये सब वो संगी संगवारी मन के पसंद के गीत हवे मोर देश के माटी। और ये गीत लगाए हमें भगत साहू और मन के साथी मन। तो आवा संगवारी हो, आप सब वो के पसंद के सुघर देशभक्ति गीत ला

वो हार गए आँखी के काजर हाँ वो हार गए आँखी के काजर बेटा मन लाज बचा ले।

0: अपन देश भारत ल बनाओ महान गा,
1: भारत ल बनाओ महान गा, भारत ल बनाओ महान गा,
0: सुख शांति एकता के संगी।
2: हाँ तो संगवारियों, हमर लोकगीत के क्रम जारी है कहा, और हमर डहर अगला ईमेल आए हवे गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी नांदघाट कातल बोडले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत अड़ार नांदघाट ले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा माँ महामाया चौक मेघापरा मुंगेली ले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेक लाल पटेल। और संगे संग संगवारी हो ईमेल के साथ हमारे डहर पत्र भी आए हवे। पत्र भेजैया संगवारी मन हमें श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले लक्ष्मण बादवानी श्रीमती विमला बादवानी मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बादवानी और यही ले हमें कन्हैया लाल तीर्थानी। छत्तीसगढ़ ले हमें छत्तीसगढ़ के दतरंगी ले हमें भागवत वर्मा लेवाई ले गुलाब दास मानिकपुरी लक्षनपुर ले विश्वनाथ साहू चर डोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू पटेल नगर मलोट पंजाब ले डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया पटरी चौक बिलाईगढ़ ले हमें खीक राम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन रेणु देवांगन और जया रानी। भाटापारा ले हमें दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। गौशाला पारा रायगढ़ ले हमें विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा यसु अंशु गुप्ता और ये सबो संगी संगवारी मन के पसंद के गीत हवे हमर देश है और ये गीत लगाए हमें राम शरण वैष्णव और लता खापाड़े। तो आवा संगवारी हो आप सबो के मन पसंद ये सुघर देशभक्ति गीत ला सुनबो और सुनाबो।

हमर अब लोकगीत के अगला क्रम में पत्र भेजैया संगवारी मन हवे ग्राम बग बुड़वा पथरिया ले नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले हवे फिरंता साहू दुलौरीन साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू रिंगनी छत्तीसगढ़ ले हवे दिनेश वर्मा करुणा वर्मा रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार भिलई ले हवे सुशील जैन कल्पना जैन सेया जैन सौरभ जैन सौर्य जैन सुभभ जैन धरसीवा ले हवे छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापरा संतोषी नगर रायपुर ले हवे छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ यादव कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू सी एल यादव ग्राम बंगला मटिया बालोद ले हवे शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशु आशुतोष अंगारे ग्राम दरचूरा ले हवे ददुआ साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू सिमगा ले हमें लव कुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य और प्रयाग सेन ग्राम खट्टी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ ले हमें सुभाष शर्मा छाया शर्मा करण तिवारी गरिमा तिवारी अर्जुन तिवारी भारती तिवारी श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले हमें मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजा के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री रॉबर्ट सन दर्रा मुड़ाले हवे लंबोदर प्रसाद फालेंद्र कुमार तरुण कुमार सुरेंद्र कुमार पीयूष कुमार हेमंत कुमार राम दयाल तुलाराम अस्मिन आयन रूप बसंत हरिशंकर लक्ष्मण रखी राम देवा पटेल सीताराम निषाद सुरेश कुमार सारथी भाई कमलकांत सारथी बीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी एमन हवे बेमेतराले मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटैले हवे नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा अरमरी खुर्द बटरेल दुर्गले हवे जैनी वार्डे नेहा वार्डे कुमारी त्रिसा वार्डे ग्राम बुड़गहार छत्तीसगढ़ ले हवे राम दुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति शशि कांता प्रजापति हिच्छा महासमुंद ले हवे अदालत दास वैष्णव मानसी शांति वैष्णव रिचा गायत्री वैष्णव भीषम दास मानिकपुरी कोष्टा पारा जुड़वा चौक सरंग पाले हवे भागवत देवांगन पदुमलाल देवांगन कुमारी सुनैना पिंकी गीता यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंदर चित्रा सरस्वती पुन्नी अमित नोमेश युवराज सिंह घासी मामा सलाम भाई रामचंद्र जी देवांगन और मन के समस्त देवांगन कुटुम्ब परिवार और ये सबो संगवारी मन के गीत पसंद हवे।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमने सुने संदेश कहा और संदेश के पहली सुनत रहन सुघर सुघर लोकगीत ला, और यही लोकगीत के साथ हमारे लोकगीत के क्रम यही सिरावत है संगवारी हो। और भी हमार तो संगवारी हो, फर्टिगेशन के माध्यम ले पोषक तत्व प्रबंधन ला अपनावा और खेती किसानी में सूचना और संचार तकनीक के समावेश करे ले यह बहुत ही लाभकारी होते। और संगवारी हो, हर घर तिरंगा अभियान चलत है 9 अगस्त ले 17 अगस्त तक, ये अभी अभियान हाँ चलत हवे। ये हर केंद्र सरकार के एक ठन बहुत बड़े अभियान हवे। और संगवारी हो, देश ला साफ स्वच्छ बनाए के हमला संकल्प लेना है, तभी हमार देश निरोगी बन सकत है, अच्छा बन सकत है, और हमन जो मनखे हन ओमन भी निरोगी बन सकत हन। तो संगवारी हो, मुरझाए के बेला हो गए कहा, तो जात जात सबो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार।

एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शहीद का ये गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। गीत और संगीत है प्रेम धवन का।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट

गीत की जो धुन बज रही है, इस गीत को हमने लिया है फिल्म पिघलता आसमान से। आवाजें किशोर कुमार और अलका याग्निक के हैं। ममता गोविंद की शब्द रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र।

0: छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनुराग का ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के हैं। आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: टाइगर केंद्र है। 8:45 में थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
3: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
3: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
2: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है।

0: अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेषक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने

0: वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी अपने फिल्म धर्मपुत्र का ये गीत सुना। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे एन दत्ता।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था आज और कल। गीत रचना साहिर लुधियानवी की थी, तर्ज बनाई थी रफी ने। आपके लिए प्रोग्राम की यह है अगली पेशकश। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, फिल्म का नाम चोरी चोरी।

फिल्म चोरी चोरी का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन। और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, बोल शैलेंद्र के, धुन सचिन देव बर्मन की, स्वर मोहम्मद रफी का है और ये फिल्म है काला बाजार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यार।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब खयाम साहब का संगीत मखदूम मोहिउद्दीन की रचना, युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज की फिल्म का नाम बाजार।

मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी यह गजल अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था बाजार। युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज के थे। संगीत खयाम साहब का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, शब्दकार हस

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना

0: ये गाना
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, जंगली कहे, कहने तो जी कहता

0: नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।
2: दिल

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके झटके के साथ चुलबुले और निरारे अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

तुमसा ने देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता के बल्ले बल्ले की।

यूँ कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी की धुन पर उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है शुमार। राजकुमार

0: आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम हैं राजकुमार जाने वाले।
1: फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नई संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।

सन 1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगिनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

उनकी निजी जिंदगी में खलिश और व्यावसायिक जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा रहा था।

सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आईं। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत। कार्यक्रम विविध संगीत में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं कैफ भोपाली।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

0: मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वैशाली मादे के गाए हुए इस गीत को। रचना है श्याम राज की, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

0: आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में, इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक

0: महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।
2: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए अब सुनिए तलत अजीज के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं बशीर बद्रू।

0: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: कार्यक्रम विविध संगीत के अंत में लीजिए, अब सुनिए सोनू निगम के गाए हुए इस गीत को। रचना है फैज अनवर की, संगीत निखिल विनय का।

सोनू निगम के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा। आवाजें मुकेश और साथियों की हैं, प्रेम धवन की शब्द रचना, संगीत उषा खन्ना का।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म दूसरा आदमी से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। मजरूह की शब्द रचना है, संगीत है राजेश रोशन का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम रजनीगंधा में लीजिए सुनिए आशा भोसले और मनहर के युगल स्वर में इंदिवर के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम होटल।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंखें का ये गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के हैं। इंदिवर की शब्द रचना है और संगीत से इसे सवारा है

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम रजनीगंधा में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में इंदिवर की शब्द रचना को। संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम कोयला।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान के स्वर में शैल हाड़ा के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है तुराज का, फिल्म का नाम गुजारिश।

सुनिधि चौहान के गाए हुए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि

0: लोग उन्हें क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
3: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के प्रसारण के साथ सुबह 5:00